मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की छठी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है और इस सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी

0: होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं, बेला सुलाखे, सुरेश वाडेकर, सीमा मिश्रा, आभास जोशी और अनूप जलोटा के स्वर में। अब कार्यक्रम अर्चना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण।

परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का ये धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ

अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे के युगल स्वरों में श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का।

0: और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए पर्यावरण चेतना का कार्यक्रम आबोहवा। आज की लघु वार्ता का विषय है तंबाकू का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव।
1: श्रोताओं पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर गैसों का सही संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है और यह संतुलन पेड़ों से ही बना रहता है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को ही काटते जा रहे हैं, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण तो वृक्षों की कमी को ही माना जाता रहा है। इसके अलावा अगर विचार करें तो विभिन्न तरीकों से उत्पन्न धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में कारक बन रहा है। वायु प्रदूषण के समस्त कारकों में एक प्रमुख और भयंकर कारक है धूम्रपान, जो तंबाकू के जलाने से उत्पन्न धुएं से होता है। आज के समय में तंबाकू का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता दिखाई दे रहा है। तंबाकू को प्रयोग में लेने के कई तरीके हैं, जिनमें खैनी, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि प्रमुख हैं। तंबाकू धूम्रपान का एक ऐसा अभ्यास है जिसमें तंबाकू को जलाया जाता है और उसका धुआं सांस में खींचा जाता है अथवा सीधे ही तंबाकू को खाने के प्रयोग में लिया जाता है। पुरानी दुनिया में तंबाकू 1500 के दशक के

0: अंतिम दौर में प्रचलित हुआ, परंतु अक्सर आलोचना का शिकार बनता रहा। जर्मन वैज्ञानिकों ने औपचारिक रूप से 1920 के दशक के अंत में धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर के बीच संबंधों की पहचान की, जिससे आधुनिक युग में धूम्रपान विरोधी अभियान की शुरुआत हुई। साथियों, तंबाकू धूम्रपान भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से तंबाकू को किसी भी रूप में जलाकर उसके धुएं को अपने शरीर के भीतर लेता है। धूम्रपान करने से तंबाकू में उपस्थित निकोटिन उसके शरीर में धुएं के साथ प्रवेश कर जाता है और फेफड़ों के द्वारा अवशोषित कर रक्त में मिला लिया जाता है, जिससे रक्त की गति और मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और कुछ समय के लिए व्यक्ति आनंद महसूस करता है, परंतु वह यह नहीं जान पाता कि यह निकोटिन कुछ समय लगातार लेने पर आदत का रूप ले लेती है। एक बार किसी व्यक्ति को यह लत लग जाए तो निश्चित समय अंतराल पर निकोटिन नहीं लेने पर व्यक्ति का मस्तिष्क सही प्रकार से कार्य करने में असक्षम हो जाता है। तंबाकू धूम्रपान का दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष धूम्रपान। इसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार से तंबाकू लेने की आदत नहीं होती है, वह तो हमेशा ही तंबाकू उत्पादों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन जीने की कामना करता है। लेकिन जब परिवार में मित्रों के साथ या किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाता है तो वहाँ उपस्थित व्यक्ति जो तंबाकू के आदि हो चुके हैं उनके संपर्क में आ जाता है। वह स्वयं तो धूम्रपान नहीं करता, किंतु आसपास हो रहे धूम्रपान के धुएं से अपने को बचा नहीं पाता और वह तंबाकू युक्त धुआं अजाने अनजाने उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तंबाकू उत्पादों पर सरकार का नियंत्रण तो है, लेकिन नियम की सख्ती के अभाव में कई बार देखने में आता है कि किशोरावस्था के बालक भी अपने घर परिवार या आस पड़ोस में बड़ों को देखकर तंबाकू का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसके कारण कई किशोर तो अल्पायु में ही असाध्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और कई समय से पूर्व ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तंबाकू उत्पाद किसी भी रूप में हो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी बीमारियां, श्वास रोग, गले का व मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। श्रोताओं, तंबाकू की फसल को कृषि के रूप में लिया जाता है। इसके लिए सरकार कृषकों को नियमानुसार पट्टे भी आवंटित करती है, क्योंकि तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में भी किया जाता है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व गलत तरीके से उपयोग कर विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद बनाकर जन साधारण के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि तंबाकू की खेती की जाने वाले खेतों में अन्य दूसरी फसलों का सही उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे खेतों का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आगामी फसल में भी तंबाकू का असर दिखाई देता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। धूम्रपान करने से वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही तंबाकू का सेवन करने वाले इधर उधर थूकने की आदतों से मजबूर हो जाते हैं, जिससे स्वच्छता पर भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण में गंदगी फैलती है। तंबाकू के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तंबाकू से होने वाली बीमारियों और नुकसान को ज्यादा से ज्यादा आम जनता को बताना चाहिए। तंबाकू की लत छुड़ाने वाली संस्थाओं और अस्पतालों को उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सैर सपाटे के स्थानों, ऐतिहासिक इमारतों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि संस्थाओं के पास ना तो तंबाकू उत्पाद बेचें या खरीदे जाएं और ना ही प्रयोग में लिए जाएं। तंबाकू निषेध दिवस के अतिरिक्त भी रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए आम नागरिकों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हम और आप मिलकर यदि दृढ़ संकल्प लेंगे तभी तंबाकू जैसे खतरनाक पदार्थ से स्वयं का और पर्यावरण का स्वास्थ्य सुरक्षित रख पाएंगे।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे पर्यावरण चेतना का कार्यक्रम आबोहवा। आप सुन रहे थे तंबाकू का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, इस विषय पर लघु वार्ता वाचन स्पर्धा हिमांशु नामा का और आलेख श्रीमती दीपा का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आपने ट्यून किया है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको बताते हैं हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। इस सभा में सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले कैंसर।

0: डॉक्टर मनीष गौतम हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। आप इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम को सुने और समय आपको एक बार फिर से बता देते हैं, सुबह 8:15 से 9 तक ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का समय आपको बताते हैं, सुबह 7:30 और सुबह 9:10। सुबह 7:30 का फिल्म संगीत होगा शीर्षक गीतों पर आधारित और आज का शीर्षक रहेगा दुनिया। सुबह 7 यानी अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा और 9:30 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज चर्चा का विषय रहेगा छोटी छोटी बचत और निरंतर प्रयास। साथ ही डॉक्टर उषा जांगिड़ से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। भेंटवार्ता का विषय रहेगा गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार खान पान और एक और सेगमेंट रहेगा जानकारी का विषय रहेगा बहनों के लिए शी बॉक्स। सुबह 10 से दोपहर 12 तक श्रोता लगातार जुड़े रहेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ और दोपहर 12 सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। उसके बाद पुनः आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। हमारे केंद्र से शाम 5 सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का संवाद रहेगा सृजनात्मक बने नकल से बचें और रंग रंगीलो राजस्थान सेगमेंट में आज जयपुर के जल महल की बातचीत की जाएगी। नॉलेज कॉर्नर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर बातचीत होगी। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7 सुनिएगा। आज का ये कार्यक्रम रहेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। 7:30 लोक संगीत और चित्रपट संगीत रात 8 आप सुनेंगे। रात 9 ए आज के कलाकार ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। सभा के अंत में रात 11 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं ये था हमारी आज की सभा का कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु 6 एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से

0: हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज। और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

हल्की हल्की गर्म सुबह का प्यारा सा एहसास धीरे धीरे जाग चुका है और फिर से फैल रहा है नया प्रकाश। सूरज की नर्म किरणें आंगन में मुस्काती है और चिड़ियों की मीठी बातें मन को खूब भाती हैं। हल्की गर्म हवाओं में दिन आगे बढ़ रहा है और एक और नया सवेरा उम्मीदों से हमारा मन भर रहा है। साथ ही चाय की प्याली कुछ सपने सजाती है और मुस्कुराकर दिन की शुरुआत जब हो जाती है तो साधारण सी सुबह भी बहुत खास हो जाती है। और इस बेहद खास सुबह को चार चांद लगाता है आपका और हमारा साथ चंबल चैनल पर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा। रेडियो की तरंगों से आपके आंगन तक पहुंच रही है ये वाणी आपकी साथी सीमा की। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

श्रोता, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम नमस्कार कोटा। और अब प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जगत प्रसिद्ध ये दोहा आपने हमने कई कई बार सुना और पढ़ा है और इस दोहे में कबीरदास जी मानवता, समानता और निष्पक्षता का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को सभी के लिए भलाई और मंगल कामना करनी चाहिए, किसी के प्रति अत्यधिक मोह या पक्षपात भी उचित नहीं और किसी से शत्रुता रखना, द्वेष रखना या ईर्ष्या रखना गलत है। जीवन में प्रेम, शांति और सद्भाव का मार्ग अपना कर ही सच्ची मानवता निभाई जा सकती है। ये दोहा हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करते हुए मन में द्वेष और घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और यही है हमारा आज का विचार। पर क्या ये आज के इस युग में प्रासंगिक है? चलिए करिए इस विचार पर आप विचार। फिलहाल मेरा विचार है आपको एक गीत सुनवाने का, तो लीजिए सुनिए, क्योंकि जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ करनी चाहिए, तो मैं तो मेरे मन में आए विचार पर विचार करते हुए आपको ये गीत सुनवा रही हूँ और आप कीजिए कबीर दास जी के इस दोहे पर विचार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं आपको जरूर आनंद आ रहा है हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर, क्योंकि प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा नमस्कार कोटा। अब बात करते हैं आज की चर्चा की। कहते हैं कार्य आरंभ के पूर्व उद्देश्य अगर स्पष्ट हो तो मंजिल आसानी से मिलती है। साथियों कोई भी काम शुरू करने से पहले उद्देश्य स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। सीधी सी बात है कि कहां जाना है उस मंजिल का रास्ता तो हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के की गई मेहनत भी कई बार भटकाव की स्थिति पैदा कर सकती है। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हमें सही दिशा, ऊर्जा और कार्यप्रणाली मिलती है, जिससे हमारा समय और संसाधनों की बचत होती है और फिर सफलता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी भवन के निर्माण से पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं सुनिए। जब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पहुँचना है तो हम उसी के अनुरूप अपनी रणनीति बनाते हैं। समय और ऊर्जा की बचत होती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं बिना उद्देश्य के कुछ भी करने के परिणाम ज्यादातर निराशाजनक होते हैं और असफलता का जोखिम बढ़ जाता है। तो करना क्या है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका उद्देश्य स्पष्ट करें और फिर उसकी योजनाएं बनाएं, फिर देखिए सफलता आगे से आगे आपके कदम चूमने चली आएगी।

ये गीत आपको क्यों सुनवाया? जी हाँ, ये सपना था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी का। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। जी हाँ, हमारा आज का अगला सेगमेंट है व्यक्तित्व। इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान, दूरदृष्टि, संवेदनशीलता और नेतृत्व का अद्भुत संगम दिखाई देता था। चाचा नेहरू, जी हाँ, हम उन्हें इस नाम से भी जानते हैं। वे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू थे, तो वहीं विश्व मंच पर भारत की मजबूत और सम्मानित पहचान भी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी सोच, उनकी सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। अब एक नजर डालते हैं उनकी जीवनी पर। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे वे। 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पंडित जी का जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। वे प्रसिद्ध वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से कानून की पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी। वे धर्म

निरपेक्षता, समाजवाद और गुट निरपेक्ष विदेश नीति की विचारधारा वाले व्यक्ति थे। देश की आजादी के लिए वे अपने पूरे जीवन काल में कुल 9 बार जेल भी गए और जेल प्रवास के दौरान उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध किताबें लिखी। उनमें से मुख्य है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी। उनकी लिखी हुई ये प्रमुख किताबें हैं। और भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय का सबसे प्रचलित आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सन 1942 में हुआ था, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। देश की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने ही बनाई थी। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान दोनों शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी की और इसरो जैसे और तकनीकी की दिशा में और विज्ञान की दिशा में अगर बात करें तो देश में आईआईटी और इसरो जैसे प्रमुख संस्थानों की नींव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में ही पड़ी। ऐसे कई देश हित के कार्य किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई सन 1964 तक, यानी अपने निधन तक, देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत के विकास में उनके अनेकों योगदान के लिए उन्हें सन 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देश के ऐसे माटी के सपूत को, ऐसे हीरे को, ऐसे मोती को आज उनकी पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं।

ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे।

श्रोताओं, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा। आप सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब आपको बता देते हैं कोटा शहर का तापमान। अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गर्मी बढ़ने की संभावना है और हीट वेव की चेतावनी दी जा रही है।

एक जानकारी आपको देना चाहेंगे। ईद उल जुहा के अवसर पर कोटा के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने अवकाश में बदलाव किया है। पहले 27 मई को यानी आज का अवकाश घोषित किया गया था और अब 28 मई को ये अवकाश रहेगा, यानी आज जो छुट्टी रहने वाली थी वो छुट्टी कल रहेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा के अंतर्गत आने वाले सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 28 मई को बंद रहेंगे।

और एक अच्छी खबर लाए हैं, 29 मई से 5 जून तक 90% भारत में प्री मानसून बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की उम्मीद बन रही है। यूरोपीय मौसम एजेंसी के अनुसार 15 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 29 मई से 5 जून तक भारतीय उप महाद्वीप के करीब 80-90% हिस्से में प्री मानसून बारिश हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अभी जो भीषण गर्मी का सामना हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। श्रोताओं, एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। आज से मुंबई सेंट्रल व काठ गोदाम के बीच नियमित साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन चलेगी। रेलवे ने विशेष गाड़ी संख्या 09075 और 09076 यानी 09075 09076 ये है गाड़ी संख्या को नियमित करते हुए मुंबई सेंट्रल काठ गोदाम के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्थायी संचालन

9076 यानी 09075-09076 ये है गाड़ी संख्या को नियमित करते हुए मुंबई सेंट्रल कार्ट गोदाम के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्थायी संचालन शुरू किया है और गाड़ी संख्या 21907 यानी 21907 मुंबई सेंट्रल काठ गोदाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 मई को यानी आज से प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:55 पर रवाना होगी और वहीं गाड़ी संख्या 21908 काठ गोदाम मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 28 मई से प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी और इनका कोटा में भी ठहराव रहेगा। तो इन गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये एक खुशी का अवसर है। श्रोताओं, अब बात करते हैं दिन विशेष की। जी हाँ, आज विश्व उद बिलाव दिवस है। विश्व उद बिलाव दिवस हर साल मई के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है, जो कि आज है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में उद बिलाव के महत्व, उनके संरक्षण के लिए आम जनता में जागरूकता बढ़ाना है। समुद्र की लहरों पर तैरते उद बिलाव मासूमियत और सुकून की सबसे प्यारी मिसाल है। समुद्र की दुनिया के सबसे प्यारे कलाकार होते हैं उद बिलाव। ये छोटे जरूर होते हैं, लेकिन उनका खेलते हुए अंदाज पूरे समुद्र में जान भर देता है। ये जल में रहने वाला एक दुर्लभ और उपयोगी जीव है, जो नदियों और जल स्रोतों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जहां उदबिलाव हो, वहां समंदर भी ज्यादा ही खुश नजर आता है। अब इस जीव से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करेंगे, और बात यह है कि संस्कृत में उद का अर्थ होता है पानी, और बिल्ली को बिलाव कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसे पानी की बिल्ली कहा जा सकता है, और पूरी दुनिया भर में उद बिलाव की 13 से 14 ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है। ये एक अर्ध जलीय यानी जल और थल दोनों में रहने वाला और मांसाहारी स्तनधारी जीव है, जो मुख्य रूप से मछलियां और जलीय जीव खाता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर ये दुनिया के सभी महाद्वीपों पर नदियों, झीलों और तटीय इलाकों में पाया जाता है। और आपको जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ यानी कोटा शहर की चंबल नदी में भी इन्हें देखा जा सकता है। पानी पर आराम से तैरते उद बिलाव जैसे जिंदगी को बिना हड़बड़ी, बिना जल्दबाजी के जीना जानते हो। इनकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है, और वो ये कि ये कभी अकेले नहीं तैरते हैं। जी हाँ, समुद्र की लहरों पर भी वे एक दूसरे का हाथ थामे तैरते हैं। लहरों पर हाथ थामे तैरते उद बिलाव हमें साथ निभाना सिखाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए हमें नदियां, तालाबों और जलाशयों को स्वच्छ रखना चाहिए। प्लास्टिक और रासायनिक कचरा पानी में नहीं डालना चाहिए। अवैध शिकार और वन्य जीव तस्करी का विरोध करना चाहिए। जल स्रोतों के आसपास लगे पेड़ पौधों और प्राकृतिक आवास को बचाना चाहिए। लोगों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, और वन विभाग और संरक्षण अभियानों का सहयोग करना चाहिए। श्रोताओं, यदि हम जल और पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे तो उद बिलाव जैसे जीव भी सुरक्षित रहेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण प्रकृति के संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है।

और श्रोताओं, इन जानकारियों और बातों और चर्चाओं के साथ अब कार्यक्रम नमस्कार कोटा को समाप्त करने का समय हो चला है। तो चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गर्मी से बचने के उपाय करते रहें, बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं और घर से बाहर जाने का समय भी तय कर लें, या तो सुबह के वक्त जाकर आ जाएं या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद आप अपना जो जरूरी काम है वो करें। बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें और घर में अगर आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं या जीव जंतु पाल रखे हैं तो उनका भी ख्याल जरूर रखें और साथ साथ अपना तो रखें ही सही। और सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अभी फिलहाल इस कार्यक्रम से अनुमति लेना चाहेगी आपकी साथी सीमा और आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना जी ने और प्रस्तुति रही राजेश महावर जी की। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।

अभी श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आपने ट्यून किया है FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज। और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं और अब समय है फिल्म संगीत का। आज शीर्षक गीत आपके लिए लाए हैं। आज का शीर्षक है दुनिया। तो चलिए इस शीर्षक पर पहला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम कुली, शब्बीर कुमार की आवाज है। आनंद बख्शी के गीत को धुन दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और लीजिए अब अगला गीत आपके लिए लाए हैं, फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो। आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार हैं OP नैयर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और आज आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है दुनिया और अब अगले गीत की बारी। फिल्म का नाम पवित्र पापी, किशोर कुमार की आवाज है, गीतकार है प्रेम धवन और संगीतकार भी प्रेम धवन। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे हैं दुनिया शीर्षक पर कुछ फिल्मी नगमे फिल्म संगीत पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। लीजिए श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज प्रातः 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले कैंसर। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष गौतम से बात कर सकते हैं। प्रसारण का समय एक बार फिर से सुन लीजिए सुबह 8:15 से 9 तक और इस प्रसारण के दौरान हमारे स्टूडियो के नंबर रहेंगे 0744 कोटा का एसटीडी कोड

लगाएं और हमारा नंबर है 2941142। तो ज़रूर सुनिएगा आज सुबह 8:15 से 9 बजे तक कार्यक्रम आरोग्य वाणी। और श्रोताओं, बात चल रही है दुनिया की, तो फिल्म हीर रांझा का ये गीत तो बनता ही है।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कैफ़ी आज़मी के बोल और मदन मोहन की धुन से सजा ये हीर रांझा फिल्म का गीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपको देना चाहेंगे एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। आरोग्य वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज सुबह 8:15 से 9:00 तक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले कैंसर और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष गौतम हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फ़ोन करके 2941142। ये है हमारे स्टूडियो का नंबर और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपका फ़ोन हमारे स्टूडियो से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ज़रूर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यवाणी आज सुबह 8:15 से 9:00 तक। और अभी आपने फिल्म हीर रांझा का गीत सुना, कैफ़ी आज़मी के बोल थे, धुन मदन मोहन की। अब इस गीत के बाद ये शन्नो क्या कह रही है ये भी सुनते हैं।
1: शन्नो

तो श्रोताओं, फिल्म राजा जानी का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात का आज का अंक।

0: आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को

0: बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
4: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती।

0: बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।

0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज और FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाएं। अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य वाणी। हर बुधवार को हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते हैं जिसमें हम बात करते हैं समाज और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की। और आज का हमारा विषय आपको बता देते हैं, आज का विषय है तंबाकू से होने वाला कैंसर। तंबाकू केवल एक आदत नहीं बल्कि धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करने वाला एक जहर है। धूम्रपान, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला, ये सारी चीज़ें हर वर्ष लाखों लोगों को गंभीर बीमारियों और कैंसर की ओर धकेल रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष गौतम जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, मेरे को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए।
2: जी जी डॉक्टर साहब। और श्रोता, आपको एक बार फिर से आज का विषय बता देते हैं, तंबाकू से होने वाले कैंसर आज का विषय है। और डॉक्टर साहब का नमस्कार आप तक पहुंच चुका है, डॉक्टर मनीष गौतम हमारे बीच में उपस्थित हैं। और डॉक्टर साहब, अब सिलसिला शुरू करते हैं हम अपनी बातों का। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुँचाता है।
4: जी धन्यवाद सीमा जी, बिल्कुल आपका बहुत ही सही सवाल है कि तंबाकू एक जहर है। आपने जिस तरह से प्रस्तावना में बताया, तंबाकू वास्तव में जहर है क्योंकि तंबाकू एक तरह से 500 रसायनों से मिलकर बना होता है और उसमें

0: में 70 प्रकार के इस प्रकार के रसायन है जो कैंसर को करने वाले यानी कि कार्सिनोजेंस उसके अंदर होते हैं।
1: जी।
0: तो बेसिकली 70 तो केमिकल कैंसर को करने वाले होते हैं, इसके अलावा तंबाकू और कई प्रकार से भी ब्लड में घूमकर दूसरी बीमारियों जैसे कि हार्ट की बीमारियों, ब्लड प्रेशर की बीमारी और प्रेगनेंसी नहीं होने वाली समस्या,
1: अच्छा।
0: इन सब का भी कारण होता है।
1: अच्छा। तो पूरी तरह से है तो नुकसानदायक ही शरीर के लिए। तंबाकू सेवन से सबसे अधिक कौन कौन से कैंसर होते हैं?
0: ग्लोबली अगर हम देखें विश्व में तो लंग कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 75% लंग कैंसर तंबाकू से रिलेटेड है वर्ल्ड वाइड। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 60% लंग कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख कैंसर है मुंह का कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर, वो भी तंबाकू के कारण ही होते हैं। इसके अलावा इसोफेगस जो फूड पाइप का कैंसर होता है, स्टमक का कैंसर होता है और किडनी और साथ में लीवर, इनके कैंसर भी तंबाकू के सेवन से बढ़ते हैं।
1: जी। क्या केवल धूम्रपान ही या बल्कि गुटखा और खैनी भी कैंसर का कारण बन सकते हैं? और जो पान मसाला आता है अपना
0: जी,
1: वो भी कैंसर का कारण है? या जैसा कि आज का हमारा विषय है कि तंबाकू से होने वाले, तो इनमें अंतर बताएं।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत भ्रांति बनी हुई है कि ये वाला तंबाकू का सेवन सुरक्षित है या ये वाला तंबाकू का सेवन हम करते हैं वो तो सुरक्षित है, वो जो दूसरा वाला तंबाकू का सेवन है वो खराब है। बेसिकली तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में बहुत ज्यादा हानिकारक है, और जो मैंने खतरनाक 70 केमिकल बताए हैं वो सब में ही होते हैं। अब इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्मोकलेस टोबैको और स्मोक टोबैको। तो स्मोकलेस टोबैको जैसा कि आपने कहा जर्दा, खैनी, गुटका, ये सब स्मोकलेस टोबैको होते हैं। जो अगर भारत में जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं, यूं माना जाता है डेटा के अनुसार कि भारत के लगभग 30% लोग गुटखा खाते हैं, मतलब तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करते हैं।
1: जी।
0: तो उनमें से 20% लोग स्मोकलेस टोबैको का सेवन करते हैं और 10% लोग जो होते हैं वो स्मोक यानी कि जैसे कि सिगरेट,
1: बीड़ी,
0: गांजा, इनका सेवन करते हैं।
1: तंबाकू से होने वाले कैंसर की शुरुआती लक्षण बताएं।
0: तंबाकू से होने वाले कैंसर जैसे कि मैंने बताया कि एक तो मुख्य है हेड एंड नेक कैंसर या मुंह के, जीभ के, गाल के कैंसर, लेरिंग्स जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है जहां से हमारी आवाज आती है उसके कैंसर, उसके बाद उसके नीचे जो हमारी ग्रास गली या नली या फूड पाइप होता है इसोफेगस के कैंसर, ये तंबाकू से होने वाले प्रमुख कैंसर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैंसर जो कि डेथ का भी बहुत बड़ा कारण है लंग कैंसर, ये भी तंबाकू से होने वाले प्रमुख कैंसर
1: में एक है। जी। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, कार्यक्रम आरोग्य वाणी, सजीव फोन इन कार्यक्रम है, ये शुरू हो चुका है आपके चैनल पर। और आज का विषय आपको बता देते हैं, तंबाकू से होने वाले कैंसर, ये है आज का विषय। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष गौतम जी। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें और डॉक्टर साहब से सीधे बात करें। स्टूडियो का नंबर आपको बता देते हैं 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड 0744, इससे पहले जरूर लगाएं। जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे तंबाकू से होने वाले कैंसर के शुरुआती लक्षणों की, लक्षण कैसे पता चले और तंबाकू खाने की आजकल हम देखते, पहले मैं अपने बचपन की बात करूं तो बड़े बूढ़ों को ही देखा जाता था कि तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट भी उस जमाने में बहुत कम देखने को मिलती थी। तो और आज इसके सेवन की कोई उम्र नहीं है, मतलब 8-9 साल के बच्चों को भी तंबाकू खाते हुए देखा गया है। तो इसकी लत क्यों लगती है और इससे जो कैंसर होता है उसके शुरुआती लक्षण?
0: बिल्कुल वाजिब सवाल। अब पहले के समय में हमने देखा है कि जर्दा और बीड़ी और कभी कभार इलिट क्लास के लोग सिगरेट, ये तीन प्रकार से ही सेवन मिलता था। बट उसके बाद में जिस तरह से बाढ़ आई है जर्दे के अलग अलग ब्रांड्स की और कंपनियों की, तो उसके बाद से जैसे कि गुटखा के रूप में, उसके अलावा अन्य दूसरे तरह के ई सिगरेट वगैरह का भी प्रचलन बढ़ा है, उनको भी माना जाता है कि वो भी हानिकारक है और

0: वो किसी भी प्रकार से सेफ नहीं है। तो जो प्रारंभिक आपने सवाल पूछा कि लक्षण, तो लक्षण इसी पे निर्भर करते हैं मैडम कि वो कैंसर कहाँ का जनरेट कर रहा है। जैसे कि गाल का कैंसर है तो गाल या जीभ का कैंसर है तो वहां पर वो एक न भरने वाले घाव या छाले के रूप में प्रकट होना शुरू होता है और उसको उसमें दर्द भी नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह का जो छाला जो धीरे धीरे बढ़ रहा हो और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा हो तो तुरंत अपने पास के जो चिकित्सक हैं उनको दिखाकर परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपकी हिस्ट्री है कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो कैंसर भी हो सकता है।
1: जी।
0: तो इस प्रकार से हेड एंड नेक के कैंसर में छाले होना, लंग के कैंसर में खांसी जो कि लगातार चल रही है, सूखी खांसी मुख्यतया, कभी कभार उसमें कभी खून के धब्बे या खून के छींटे भी दिख जाते हैं खांसी में, और साथ में सांस भरना, ये लंग के कैंसर के लक्षण हैं। उनमें कभी कभार भूख नहीं लगना और वजन कम होना भी शामिल।

0: की खांसी मुख्यतया कभी कभार उसमें कभी खून के धब्बे या खून के छींटे भी दिख जाते हैं खांसी में, और साथ में सांस भरना, ये लंग के कैंसर के लक्षण है। उनमें कभी कभार भूख नहीं लगना और वजन कम होना भी शामिल है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने जिक्र किया सांस भरने का, सांस भरने की और भी कई कारण होते हैं, तो कैसे पता लगे कि ये कैंसर का ही एक लक्षण हो सकता है?
0: जी, जो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं उनको बिल्कुल आपने सही कहा कि अन्य प्रकार की सांस के भरने की बीमारियां भी हो सकती है, जिसमें सबसे मुख्य है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि सीओपीडी या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। और जो सिगरेट और बीड़ी पीते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी भी लग जाती है, और इन सब में भी सांस भरते हैं।
1: जी, जी,
0: और साथ में फिर एक मैंने जो जिक्र किया कि कैंसर होने का भी खतरा जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें होता है। और उसमें भी सांस भरती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से किया जाता है कि जब आपको लगता है कि 15 से 20 दिन से ज्यादा की खांसी है और वो कई प्रकार के इलाज और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी या एक पास के कोई अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होती है तो एक शक का दायरा बढ़ जाता है और आपको एक ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर को अपने माइंड में रखकर आगे की जांचें प्रोसीड करानी होती है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो हेलो,
2: आवाज आ रही है?
1: जी जी आ रही। नाम बताएं।
2: मैं महेश कोटा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सर, जैसे सर बता रहे हैं तो ओरल कैंसर के बारे में, जैसे जो बीटल नट सुपारी वगैरह काम में लेते हैं, पान में, सादा पान में बिना जड़ दही वाला, तो वो भी क्या कैंसर को जनरेट करते हैं?
1: जी डॉक्टर साहब
0: बताएं। जी महेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कई प्रकार के मिथ प्रचलित हैं तंबाकू के बारे में। जैसे कि मैम ने पहले भी पूछा कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं, तो तंबाकू की बात तो हम कर चुके हैं कि तंबाकू के स्मोकलेस और स्मोक वाले जो हैं टोबेको, तो उसमें ये रहता है कि कैंसर या अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है। आपने पूछा कि सादा पान मसाला और सुपारी, तो एक्चुअली क्या है, जो सुपारी होते हैं उसमें भी कुछ इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी को जन्म देते हैं, जिसमें हमारे जो मसूड़े हैं और जो हमारे गाल की जो म्यूकोसा है वो फाइब्रोस्ड होने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारे मुँह का खुलने का वो कम हो जाता है, मुंह जो खुलना है वो कम हो जाता है। तो जब मुंह खुलना कम हो जाता है तो इस बीमारी को बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, और सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी एक प्रकार के कैंसर का एक प्रीलिमिनरी या रिस्क फैक्टर है। मतलब यानी कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस में बाद में कैंसर होने का खतरा होता है, तो इनडायरेक्टली कैंसर को बढ़ाता है वो, बट डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि वो डायरेक्ट कैंसर करते हैं।
2: थैंक यू सर।
0: जी
1: जी महेश जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, महेश जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, सुपारी, क्योंकि इसका तो जिक्र आया ही नहीं है। हालांकि जो जितने जी ये पुड़िया में जो जितने भी जर्दे आते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुपारी डली हुई होती है, लेकिन फिर भी अलग से सुपारी खाने वाले भी लोग देखे गए हैं। शौकिया खाते हैं, कोई फीकी सुपारी खाता है, कोई वो जो कोटेड आती है मीठी सुपारी, वो भी क्या आगे चल के जैसे अभी आपने बताया कैंसर, लेकिन उसमें और तंबाकू में क्या अंतर है? आप
0: तंबाकू में तो मैडम एक्चुअली तंबाकू तो बेसिकली एक जो पौधा है उसके पत्तों से बनाया जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो उनको पत्तों को सुखा कर और उसको जब बाद में उसका चूरा करके और बाद में उनको अलग अलग उसमें जैसे सिगरेट में, बीड़ी में या तंबाकू, और फिर उसी को गुटके में के रूप में जितनी भी गुटके के ब्रांड्स आते हैं उनमें लपेट कर उसको बनाया जाता है। एक होता है सादा करके बोलते हैं जिसमें ओनली कुछ मसाला होता है, उसमें तंबाकू नहीं
1: जी,
0: होता है। तो बेसिकली तंबाकू से ही होती है।
1: हेलो हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताएं।
3: विष्णु कुमार कोठारी।
1: जी कोठारी जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं?
3: अभी डॉक्टर ने वो खादा मिश्री के बारे में बात की थी। मैं ये पूछा था कि जो आजकल चिकनी सुपारी आती है ना, ये जोधपुर ज्यादा, इसके बारे में क्या?
1: चिकनी सुपारी,

0: जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली सुपारी जो है उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है कि वो कैंसर करती है, और कभी कभार शौक के रूप में लोग उसका सेवन करते हैं, परंतु वो हमारे जो मुंह के जो अंदर का जो वातावरण है उसको चेंज करने का मादा जरूर रखती है। वो धीरे धीरे हमारे मुंह के खुलने की जो टेंडेंसी है उसको कम करती है, और जब मुंह खुलना कम होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली कई प्रकार की बीमारियां, स्पेशली इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मुंह के जो दांतों की खराबी होना वो शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार उसी में कुछ और अगर फैक्टर्स जुड़ जाते हैं तो कभी कभी सुपारी खाने वालों में भी कैंसर हो सकता है।
1: जी, डॉक्टर साहब उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हाँ आपकी बात उन्होंने रेडियो पर सुन ली होगी। और कोठारी जी, आप प्रोग्राम से जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज का विषय है तंबाकू से होने वाले कैंसर। डॉक्टर मनीष गौतम हमारे बीच में उपस्थित है। अभी एक अंतराल का समय है, रुकते हैं थोड़ी देर और फिर हाजिर होते हैं।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध, आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर, स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा, कोटा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम आरोग्य वाणी में। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। आज इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष गौतम जी, और चर्चा हम कर रहे हैं तंबाकू से होने वाले कैंसर के बारे में। जी डॉक्टर साहब, अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हालांकि घूम फिर कर बात वहीं आएगी क्योंकि हमारे कॉलर भी हमसे सवाल पूछेंगे। तो मुंह के कैंसर और फेफड़े का कैंसर आपने बताया, तो इनमें जो है वो संकेत लक्षण, फेफड़े के कैंसर होने के क्या लक्षण दिखाई दे?
3: लंबे समय तक चलने वाली खांसी जिसका कई प्रकार के इलाज लेने के बाद भी ठीक ना होना।
2: डॉक्टर साहब, हमारी बात शुरू हुई है, एक कॉलर है। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं। जी जी बोले आप, नाम फिर से बताएंगे एक बार?
4: दिलीप राठौर।
2: जी दिलीप जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं?
4: मेरा ये कहना है कि ये कैंसर वगैरह होता है तो ये तंबाकू वगैरह से होता है, तो सरकार ये तंबाकू बंद क्यों नहीं कर देती? 30-50% तो फायदा मिले जनता को।
2: सही बात,
4: तंबाकू खाते हैं और कैंसर होता है। तंबाकू बंद हो गए ऊपर से तो समाधान ही 10-20% रह जाए, सबका खर्चा भी बचे।
2: दिलीप जी, आपका ये सवाल और सुझाव दोनों तौर पे इस बात को लेते हैं, और ये क्योंकि मसला हमारा नहीं है, हम यहाँ आकाशवाणी में बैठे हुए हैं आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक और जानकारी पूर्ण कार्यक्रम देने के लिए। तो
4: दिल दुखता है कि यार इतना खर्चा होता है आदमी का और
2: जी जी
4: जी,
2: जी
4: ध्यान देती नहीं।
3: बिल्कुल जी दिलीप जी, बिल्कुल दिलीप
4: जी, कहती है प्लास्टिक बंद हो जाए, प्लास्टिक की थैलियां बंद हो जाए, थैलियां कैसे बंद होगी?
2: बहुत जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही
3: नहीं, हम आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हैं। अगर वास्तव में तंबाकू का बैन कर दिया जाए तो लगभग 30% कैंसर से वैसे ही निजात मिल जाएगा,
4: है ना? देखो
3: जी
2: जी जी जी जी,
4: ये बात पहुँचाओ ऊपर।
3: जी
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
4: नागरिक है छोटे से, अब ऊपर बड़े आदमी पहुँचाए
3: तो नहीं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे
2: जी। देखिए ये कार्यक्रम दूर दराज लोग सुन रहे हैं, हो सकता है आपका ये संदेश कहीं किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इस की तरफ इस चीज को सुधार करने की तरफ एक कदम बढ़ाए। तो
4: क्या इसमें क्या होता है, जर्दे में क्या डालते हैं जो आदमी को

0: छूटता ही नहीं है, तो ऐसे केमिकल पे भी बैन लगना चाहिए।
1: जी जी जी जी जी जी जी जी दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, और आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम आप पूरा जरूर सुने, और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे फेफड़ों के कैंसर
2: लक्षणों जी, तो एक लंबे समय की खांसी और साथ में उसके साथ ही धीरे धीरे सांस भरना, कभी कभी चेस्ट पेन होना, क्योंकि वो लंग्स हमारे दो होते हैं, तो दोनों लंग्स में कहीं पर भी कैंसर की शुरुआत हो सकती है, ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। तो जहाँ पे शुरुआत होती है वहाँ की चीज़ को जकड़कर, जैसे कि पीछे की तरफ है तो वो हमारी जो बैक पेन शुरू करवा सकता है, आगे की तरफ है तो वो चेस्ट पेन भी शुरू करवा सकता है। इसके अलावा वो हमारी मिड वाले एरिया में अगर होते हैं तो वहाँ पे ब्रोंकियल आर्टरी हमारी जो सप्लाई होती है लंग्स की वो अफेक्ट होती है, तो वो हिमोप्सिस यानी कि खांसी में खून आना, इस प्रकार के सिम्टम्स को भी वो कर सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में आया कि किसी भी व्यक्ति के फेफड़ों में कैंसर बनने में या मुंह का कैंसर बनने में कोई समय अवधि होती है कि इतना लंबे समय तक तंबाकू के सेवन से ये हो सकता है? कई बार लोग ऐसा करते हैं कि शौकिया तौर पर खाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर से खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या उनको कैंसर होने की आशंका रहती
2: है? जी, ये बहुत डीप क्वेश्चन है मैडम, और ये मैं जो बोलूँगा उसको सुन के शायद श्रोता थोड़ा शोक करेंगे कि बेसिकली किसी भी कैंसर की शुरुआत, ज़्यादातर कैंसर्स की शुरुआत जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 ईयर्स बिफोर हो जाती हैं। जब आप कोई भी किसी भी प्रकार के केमिकल्स को, जैसे कि तंबाकू हो गए या कोई एल्कोहल हो गए या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आप इस प्रकार के एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, या आप कोई खान में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलिकोसिस का खतरा है या ट्यूबरकुलोसिस के खतरे हैं, तो ये सब जो होते हैं म्यूटेशन करते हैं हमारी बेसिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर एक डीएनए होता है उस पर। तो ये जो पहला म्यूटेशन होता है वो 7-8 ईयर बिफोर स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें मल्टीपल म्यूटेशंस ईयर बाय ईयर होते जाते हैं, और एक टाइम पर वह ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो हमारी जीन होती है या डीएनए होता है वो, और उसके बाद फिर हमारे शरीर का कंट्रोल उस सेल पर या डीएनए पर नहीं होता है, और वो अनकंट्रोलेबली प्रोलीफरेशन यानी कि उसका डिवाइडेशन और प्रोलीफरेशन या ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और वो बाद में फिर बाहर जब वो एक सेंटीमीटर के रूप में बाहर आता है तब जाके वो हमारे को कष्ट देना शुरू करता है, वहाँ तक वो अंदर ही अंदर चलता रहता है।
1: अच्छा, आपने मुंह के कैंसर की शुरुआत में बात की थी, मुंह के अंदर छाले होते हैं जो दर्द रहित होते हैं, दर्द नहीं होता है, कई बार कई लोगों को देखा है मैंने, मेरे जानने वाले हैं जो जिनको मुंह के छालों की परेशानी रहती है जबकि वो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो क्या इस तरह के छाले होना बार बार ये भी एक तरह के मुंह के कैंसर का कारण हो सकते हैं?
2: जी जी नहीं, मतलब जो रिकरेंट अल्सर होते हैं उनके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कई प्रकार की जैसे डायबिटीज होने।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
3: जितेंद्र बात कर रहा था मैम।
1: जितेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं? तालेड़ा से। जी पूछें, क्या पूछना चाहते हैं?
3: डॉक्टर साहब से पूछना था।
1: हाँ
3: डॉक्टर साहब बता रहे थे कैंसर होता है, कल से बात है होता है, पूछ रहा था जैसे तेज मिर्ची खाने से और ये शराब पीते हैं कोई शराब से दोस्त है जिसको?
1: नहीं, तंबाकू आज का हमारा जो विषय है तंबाकू से होने वाले कैंसर, और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें आप।
3: जो है तो पूछ रहा हूँ मैं, तेज मिर्ची खाने से या शराब पीने से इनसे भी हो सकता है क्या?
2: जी जी बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। बेसिकली क्या है कि तेज मिर्ची खाने से कैंसर का तो कोई रिलेशन नहीं देखा गया है, पर तेज मिर्ची खाने से कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो पेट की समस्याएं वो जरूर हो सकती हैं। शराब किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, इसलिए शराब का सेवन करना तो किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, और वो कैंसर और लीवर की बीमारियां करने में सहायक भूमिका निभाता है, और जब तंबाकू और शराब दोनों मिल जाते हैं तब तो फिर बहुत ही खतरनाक रूप से कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जितेंद्र जी आप मिर्च तेज खाते हैं क्या?

0: हाँ तो मिर्ची मिर्ची तो आप आराम से खाएं, जैसे आपको पसंद है उतनी खाएं, बस जो ये नशीले पदार्थ हैं उनसे दूर रहें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। जी जी बस तो फिर आप मिर्ची दबा के खाएं जितनी तेज खाना चाहें। हाँ हाँ नहीं आपने पूछा, डॉक्टर साहब ने बोला ना कि मिर्ची से कैंसर नहीं होता है, है ना? ठीक है, और प्रोग्राम को ध्यान से सुने और अभी आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक नया मसला आया मिर्ची का, शराब से जुड़ी बात भी इन्होंने पूछी और आपने बहुत ही संतुष्टि भरा जवाब उनको दिया। अच्छा, आजकल युवाओं और किशोरों में बढ़ती तंबाकू की आदत जो है, जो एक हमारे कॉलर ने भी पूछा था और कहा था कि उसमें क्या चीज़ ऐसी डालते हैं कि वो लत पड़ जाती है, छूटती नहीं है, तो उसका थोड़ा आप बताएं कि क्या रहता है कि उसी टाइम पे, मतलब वो खाने का क्यों मन में आता है जो भी तंबाकू खाता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में कई बार देखा जाता है कि लोग बहुत फ्रिक्वेंटली खाते हैं, एक बार खाया कुल्ला किया और 5 से 7 मिनट का गैप लिया और तुरंत फिर से तंबाकू खा लिया, तो ये क्या मंशा रहती है, ये थोड़ा माइंड सेट आता है?
1: जी मैम, इस प्रक्रिया को टोबैको डिपेंडेंसी बोलते हैं। टोबैको डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज का जब सेवन करते हैं और उसकी हमें बार बार याद आती है, तो बेसिकली तंबाकू में जो खुद 70 प्रकार के जो हानिकारक केमिकल्स हैं, वो खुद में ही उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी मेमोरी और ब्रेन में जाके हमारे कुछ केमिकल जो सीरोटोनिन और इनको रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और वो बाद में मेमोरी के रूप में वो बार बार उसकी आदत में डालते हैं। और जब आप पहले तंबाकू खाते हैं, आपने मान लो कुछ मिलीग्राम की मात्रा में तंबाकू खाया, तो कुछ महीनों बाद आपको उससे ज्यादा ही मात्रा में तंबाकू खाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो वाला सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डिपेंडेंसी। और जो सिगरेट पीते हैं उनमें भी ये लत, जिसको बोलते हैं हम, लत लग जाती है। तो अगर कोई इंसान 20 सिगरेट पर डे से ज्यादा अगर पीता है तो उसको बहुत हैवी डिपेंडेंसी बोलते हैं, या जो उठने के 30 मिनट के अंदर ही पहली सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो उसको डिपेंडेंसी बोलते हैं और उसको छुड़ाने का उपक्रम करना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं तंबाकू से होने वाले कैंसर पर एक विशेष चर्चा। डॉक्टर मनीष गौतम हमारे बीच में उपस्थित हैं। तंबाकू से दूरी ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम बार बार आपसे जानकारी तो देंगे ही, लेकिन बार बार हमारा अनुरोध है आपसे कि आप इन नशीली पदार्थों से अपने शरीर की दूरी बनाए रखें, इनसे दूर रहें, इनकी लत न पड़ने दें। छोटी सी लत क्योंकि जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, और अगर आपको नुकसान होगा तो आपके जो परिवारजन है वो भी परेशान होंगे, तो ऐसी लत को डालना ही क्यों, जागरूकता और सही जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। और उसके लिए हम समय समय पर लेकर आते हैं आपके लिए जानकारी भरे ये सजीव फोन इन कार्यक्रम, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम आरोग्यवाणी में तंबाकू से होने वाले कैंसर, ये है आज का विषय। डॉक्टर मनीष गौतम हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744। जी डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जांचों की, टेस्ट करवाने की। तो किस हद तक जाके, जैसे मुंह के कैंसर शुरुआत करते हैं कि मुंह में क्या परेशानी लगे मरीज को, या मरीज नहीं कहे तंबाकू खाने वाले को, क्योंकि तंबाकू खाने वाले खुद को मरीज नहीं समझते हैं, तो कब जाएं और जांच कराएं, कब उन्हें लगना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए कि हमें जांच करानी चाहिए, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पनप रही है?
1: जी जी मैम, मैडम बेसिकली आज का विषय वैसे
0: एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार गुप्ता, विज्ञान नगर से।
0: जी जी भूपेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्ते सर,
0: फिर से नमस्कार और आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम।
2: मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है।
0: जी पूछें।
2: ये खाने से तो हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो सुनते हैं इसको देखो का कारण
1: है। बिल्कुल सर, किसी भी रूप में और किसी भी फॉर्म में कैंसर तंबाकू का

0: संक्रमण जो है वो कैंसर कारक हो सकता है।
1: तो खाते तो नियम तो सुनते हैं।
0: हाँ नहीं, पर उनको हो सकता है।
1: पुराने जमाने में तो बहुत चलन था इसका।
0: चलन था सर, और उनको होते भी थे पहले कैंसर, पर पहले डायग्नोस्टिक की इतनी सुविधाएं और ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं था, तो डायग्नोसिस नहीं होते थे, परंतु कैंसर तो होते थे पहले भी।
1: कुल मिला के सभी तरह से हानिकारक।
0: हानिकारक जी।
2: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर। हाँ, हम बात कर रहे थे जांचों की।
0: जी, जांचें तो बेसिकली मैम, मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहूँगा। आज का हालांकि टॉपिक हमारा कैंसर और तंबाकू है, लेकिन तंबाकू से होने वाले अन्य बीमारियों के बारे में भी मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा।
2: जी, जरूर, जरूर।
0: कि तंबाकू के सेवन से हमारी जो धमनियाँ होती है, जो हमारी ब्लड सप्लाई को लेके जाती है, उसमें एक परत जमती जाती है, और इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे अन्य बीमारियों जैसे कि बर्जर डिजीज, जिसमें पाँव में सप्लाई कम हो जाना और बाद में कई बार पांव काटने की भी नौबत आ जाती है, वो बीमारी जो कि एक तरह की आर्टेरियल डिजीज कहलाती है। उसके अलावा हार्ट अटैक, पैरालिसिस वाले जो स्ट्रोक, जो ब्रेन में सप्लाई रुक जाती है वो। अच्छा। और इसके अलावा कहीं की भी सप्लाई को वो रोक के उस जगह के बीमारी को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो हमारी धमनियां हैं वो टाइट हो रही हैं, तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है।
2: जी, जी,
0: इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेज भी आते हैं, क्योंकि जो तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं उनको एक बिहेवियरल और एंजाइटी और डिप्रेशन होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा देखी गई हैं। तो वो और डिप्रेशन में और एंजाइटी में और ज्यादा सेवन करते हैं और अल्टीमेटली अपने स्वास्थ्य के साथ में हानि करते हैं। और अल्टीमेटली जो मैंने पहले भी बताया कि लंग्स की जो डिजीज है वो भी तंबाकू के सेवन से होती है। तो इन्हीं से रिलेटेड जांचें करानी चाहिए, कि जैसे कि आपको अगर लत लगी हुई है तो आपको साइकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करने चाहिए, वो आपको इसकी आदत छुड़ाने में सहायक भूमिका निभाएंगे। अगर आपको कोई छाला या सांस लंबी चल रही है तो आपको चेस्ट के जो डॉक्टर और फिजिशियंस जो होते हैं उनसे, या फिर कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। और उसके लिए आप लो डोज सिटी स्कैन करा सकते हैं, तो उससे एक बार रूल आउट हो जाएगा कि आपको कोई कैंसर तो नहीं है। तीसरी चीज होती है कि आपको लंग के रिलेटेड अन्य जो बीमारियां हैं जैसे COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उनके लिए जो फिजिशियंस हैं उनके पास कई प्रकार के स्पायरोमेट्री, FOBT वगैरह करके कई प्रकार की जांचें अवेलेबल हैं, वो करा के अपनी बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़कर और उसका इलाज भी लेना चाहिए।
2: जी जी जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने जांचों के बारे में। जांचों का अभी आपने एक नाम लिया था बीच में, तो जांचें अलग अलग तरह की होती है?
0: हाँ, मतलब मुख्य जांचें अगर हम केवल तंबाकू से रिलेटेड कैंसर की बात करें तो इनमें सबसे एक अच्छा टूल जो हमारे पास है वो सिटी स्कैन होता है।
2: अच्छा।
0: तो हम छाती का एक सिटी स्कैन, और कभी अगर हमें डाउट होता है कि यहाँ मुंह में या गले में कोई समस्या हो सकती है तो एक गले का सिटी स्कैन करा के हम काफी हद तक बीमारी को टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसमें कहीं डाउट होता है तो फिर हमारा जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट टूल है वो है बायोप्सी।
2: अच्छा।
0: फिर उसको कंफर्मेशन करके बायोप्सी से, और अगर वो कैंसर है तो फिर उसका इलाज
2: शुरू करते हैं। जी जी जी जी। अच्छा, बात करते हैं धूम्रपान की। जो धूम्रपान कर रहा है उसके लिए तो 100% हानिकारक है ही सही, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग कितने इफेक्टिव होते हैं?
0: जी जी, इसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं मैडम। अच्छा, या पैसिव स्मोकिंग बोलते
2: जी,
0: हैं
2: जी।
0: तो जो
2: डॉक्टर साहब, ये स्मोकिंग की बात हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो।
3: हेलो मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं और कहां से बोल रही हैं ये भी बताएं।
3: प्रिया बोल रही हूँ मैम, तलवंडी से।
2: जी प्रिया जी, बोले।
3: और डॉक्टर को नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर, किसी भी चीज की लत आराम से लग जाती है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए क्या करें, सबसे बड़ी ये समस्या है।
0: जी प्रिया जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये बेसिकली क्या है, बहुत बड़ी टास्क है। इसमें केवल एक सिंगल पर्सन एक उसमें सफल होना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इमारत बनाने में समय लगता है लेकिन उसको ढहाने में एक दिन लगता है। तो उसी प्रकार से इसको लत लगने के बाद में इसको जो छुड़ाना है वो बहुत समय लेता है। तो इसमें जो पेशेंट की विल है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाती है, उसके बाद परिवार वालों की भी, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग उपाय करके उसको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर जो हेल्थ

0: प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियंस, इनको भी शामिल करके और अलग, आजकल तो इनको छुड़ाने के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी और अन्य प्रकार की कई वेरेनिक्लिन करके कई मेडिसिंस भी आ गई हैं, एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिंस भी हैं जो इनको छुड़ाने में काफ़ी मदद करती हैं। तो अगर हम संपर्क करेंगे तो हमारा ये तम्बाकू या स्मोकिंग छूट सकती है।
1: एक जो ये लाल मंजन हाड़ होती है प्रचलित है क्या, ये भी
0: बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल मैम उसमें अच्छे से पाया जाता है तंबाकू, तो लाल दंड मंजन उतना ही हानिकारक है जितना किसी भी अन्य रूप में तंबाकू हानिकारक है, तो लाल दंड मंजन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: धन्यवाद, अच्छी जानकारी, अच्छे कार्यक्रम के लिए।
2: थैंक यू प्रिया जी, आप भी कार्यक्रम से जुड़ी, प्रोग्राम आप सुन रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, प्रिया जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया लाल दंत मंजन का, तो हम पहले सेकंड हैंड धूम्रपान की बात कर रहे थे, उसकी उसके बाद हम आते हैं लाल दंत।
0: तो जो सेकंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग होती है मैडम, वो उन लोगों को की डेफिनेशन में वो आते हैं जो आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पे कोई अन्य स्मोक करता है, जैसे कि सिगरेट किसी के फादर या ब्रदर या सन स्मोक करते हैं और वहीं पर उसके उस एनवायरनमेंट में जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो चाहे कभी भी उन्होंने स्मोक ये टोबेको का सेवन नहीं किया है, लेकिन उनकी भी अप्रोक्सीमेटली 20-30% रिस्क बढ़ जाती है कैंसर होने की, तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना की प्राइमरी स्मोकिंग।
2: तो हमारी अपील है धूम्रपान करने वालों से कि आप अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों का, आप वर्क प्लेस पर अगर स्मोक करते हैं तो आसपास के लोगों का ध्यान रखें और घर परिवार में अगर आप हैं तो भी घर के लोगों का ध्यान रखते हुए एक बार सोचें कि ये धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है तो छोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। और डॉक्टर साहब, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर प्रयास पुरजोर तरीके से किए जाएं तो ज़रूर सफल होते हैं,
0: सफलता मिलती है।
2: जी जी जी जी जी। अब लाल दंत मंजन की बात करते हैं, क्योंकि तंबाकू खाते हुए ज़्यादातर मेल्स देखे जाते हैं, पुरुषों में ये स्मोकिंग और ये सब है। अब तो हालांकि प्रचलन बहुत बुरी तरह से चल रहा है इन चीज़ों का, लेकिन लाल दंत मंजन का प्रचलन भी बहुत समय से हम देख रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं, तो ये भी क्या आगे चल के ये मंजन करना जो कोई 5 मिनट के लिए करती है, कोई 10 मिनट के लिए, या बहुत देर देर तक भी औरतों को देखा गॉसिप करती जाएंगी और मंजन चलता रहेगा, तो क्या ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है?
0: जी जी मैम, वो प्रिया जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली पहले जो ये लाल दंत मंजन आते थे तब से ही इनका सेवन बढ़ा है और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, कई लोग तो 20-20-30-30 बार तक लाल दंत मंजन करते हैं, बातें करते रहते हैं और उसको करते रहते हैं, और उसमें ऑब्वियसली जर्दा पाया जाता है, तंबाकू पाया जाता है और वो उसी तरह से हानिकारक है।
2: जी जी जी। अच्छा, लाल दंत मंजन करने वालों को मुँह का कैंसर होगा या शरीर के अन्य भागों में भी?
0: मेनली मुंह का ही होगा क्योंकि वो संपर्क में मुंह के ही आता है। बेसिकली ये जो कैंसर होते हैं वो बार बार जब केमिकल आपकी किसी स्ट्रक्चर पे टच होते हैं, तो जब आप तंबाकू, खैनी, गुटखा, लाल दंत मंजन ये करते हैं तो आपके मुंह के कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि अन्य कैंसर भी उनकी रिस्क बढ़ती है क्योंकि वो ब्लड में भी घूमता है और अन्य बीमारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन जो सिगरेट और बीड़ी है उनसे आपके लंग के कैंसर और इसोफेगस के कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है।
2: जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: सत्यनारायण को।
2: जी सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछे क्या पूछे? धन्यवाद धन्यवाद। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आए, आपकी आवाज कट कट के मिल रही है मुझे।
3: आप आ रहे हैं मेरी आवाज?
2: हाँ जी बिल्कुल। अब पूछे, आप क्या पूछना चाहते हैं?
3: जैसा कि अभी एक दीदी ने क्वेश्चन किया था कि इंजेक्शन लगते लगने में तो आसानी से लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मन का संकल्प हो तो कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम आसान हो सकता है, छोड़ सकते हैं।
2: जी जी जी।
3: जैसे आकाशवाणी से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते थे, मुझे भी बहुत बड़ी लगती है कि मैं बहुत कुछ खाता था पहले।
2: अच्छा।
3: तो लेकिन आपकी इसी जानकारियों के माध्यम से मैंने 2013 में इससे मुक्ति पा गया हूँ। मैंने 6 महीने में प्रयास किया था, तब जाके मैं छोड़ पाया।
2: अरे वाह वाह, बहुत

0: बहुत ही अच्छी बात है सत्यनारायण जी ये, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी जी जी।
1: और आज मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पहले मैं भी आकर के कहीं अच्छी जगह पर भी थूक देते थे, उसका भी हमें ख्याल नहीं रहता हमने कहाँ पर थूका है। और न चाहते हुए भी हमें वो सेवन करना पड़ता है, इतने आदि हो जाते हैं।
0: चलिए, अब आपके प्रयासों से और ईश्वर की कृपा से आप इस चीज से दूर हो चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बार पुनः आपको बधाई देना चाहेंगे, और आपको जो हमारे अन्य श्रोता सुन रहे हैं शायद आपसे इस बात की
1: अगर मन का प्रयास भी हो और अगर दूर होना।
0: जी, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बहुत अच्छा संदेश वो दे रहे थे,
2: प्रेरणा बनेंगे वो।
0: जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर में क्या सकारात्मक बदलाव आते हैं?
2: तंबाकू छोड़ने के समय पर तो थोड़ा सा अब जो चूँकि लत लगी हुई है इतने सालों की, तो वो वापस आपको अपने अंदर खींचती हैं और वो कई प्रकार के सिम्टम्स देती हैं जिनको विड्रोल सिम्टम्स बोलते हैं। तो जब तंबाकू आदमी छोड़ता है तो उसको नींद नहीं आना, अनईजी फील करना, बार बार तंबाकू की याद आने की वजह से फिर आप उसको चूँकि आप बंद कर चुके हैं तो वो आप फिर किसी और चीज़ का ज़्यादा सेवन करना तो उससे फिर मोटापा बढ़ना, तो ये सब तरह की समस्याएं भी जुड़ी हुई होती हैं तंबाकू छोड़ने के दौरान। परंतु अगर धीरे धीरे प्रयास किया जाए तो 2 से 3 महीने में इन सब समस्याओं पर निजात पाया जा सकता है और तंबाकू को हम छोड़ सकते हैं। सकारात्मक बदलाव ये आते हैं कि आपके जो रिस्क हैं कैंसर होने की, हार्ट की बीमारियां होने की, हाइपरटेंशन होने की, एंजाइटी और डिप्रेशन होने की, ये सब जो होने वाली रिस्क हैं वो कम हो जाती हैं।
0: जी, जी।
2: और व्यक्ति बहुत अच्छा अनुभव करता है ऑब्वियसली।
0: जी जी। डॉक्टर साहब एक श्रोता जुड़े हैं। हेलो हेलो
3: हेलो मैडम।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मेरा सवाल है।
0: हाँ, पहले नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? ये
3: नाम सत्यनारायण मीणा, ग्राम बरता बावड़ी, जिला बूंदी से।
0: जी जी जी, बोले सत्यनारायण जी।
3: सवाल है क्या मैडम, गुटके पान मसाले के अलावा बीड़ी सिगरेट के अलावा और से भी कैंसर हो सकता है क्या मैडम?
0: और से किससे?
3: मतलब और कोई चीज उसे जैसे शराब वराब।
0: हाँ, ये डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। आप प्रोग्राम नहीं सुन रहे थे, शुरुआत में बताया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब एक बार फिर से।
2: जी, सत्यनारायण जी, बहुत अच्छा सवाल आपने दोबारा पूछा है। शराब से, शराब का किसी भी रूप में सेवन सुरक्षित नहीं बोला गया है, और शराब से आपके लीवर के कैंसर और जो तंबाकू से होने वाले कैंसर है उनमें बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए शराब और तंबाकू किसी भी रूप में सेवन हानिकारक है। और इसके अलावा आपने पूछा कि और किसी चीज से भी कैंसर हो सकते हैं क्या, तो जो रेड मीट का ज्यादा सेवन होता है तो उससे भी बड़ी आंत के कैंसर होने की संभावना होती है। और जो हम आजकल दूषित खाना खा रहे हैं जिसमें अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड्स का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है वो भी हमारे लिए कई प्रकार के कैंसर के कारण है। हालांकि उनका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता कि किससे कौन सा कैंसर होता है, परंतु वो स्वाभाविक रूप से इन्हीं के कारण कैंसर होता है। और एक जो हमारी दिनचर्या और आज का जो समय हो गया है भागम भाग की दौड़, भागने की जो जिंदगी हो गई है वो भी हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन जो बढ़ाती हैं और हमें खुश रहने में रोकती हैं वो भी कैंसर होने में सहायक भूमिका निभाती हैं।
3: और सर एक सवाल हो रहा है मेरा छोटा सा।
0: हाँ, जल्दी से पूछे क्योंकि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। हाँ, हाँ।
3: सवाल है कि लकवे के मरीज को बीड़ी पिला सकते हैं क्या?
2: बीड़ी क्यों पिला सकते हैं सर? बीड़ी तो पिलानी नहीं है ना। पानी पिलाई है, जूस पिलाई है, दूध पिलाई है, पिलाइए उनको, है ना। और कोई अच्छे अच्छे टॉनिक्स पिलाइए, सूप पिलाइए, आप बीड़ी क्यों पिलाइए?
0: नहीं पिला सकते हैं।
3: जी जी मैडम।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्पेशली तंबाकू से?
2: जी धन्यवाद मैडम, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाया। और मैं हमारे देश के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि कैंसर एक बहुत ही भयावह रूप लेता जा रहा है और उसके अलग अलग कारण हैं जिसमें से तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है और उसमें शराब का सेवन भी उसमें सहयोगी भूमिका निभाता है। तो आपको मेरा यही संदेश रहेगा कि आप तंबाकू और शराब का सेवन तुरंत प्रभाव से बंद करें और अपनी स्ट्रॉन्ग विल, परिवार के सहयोग और डॉक्टर्स के सहयोग से इसको बंद कर।
0: जी जी जी बहुत बहुत ही अच्छी बात।

डॉक्टर साहब ने कही। और श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि तंबाकू केवल एक नशा नहीं बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का बड़ा कारण बन सकता है। समय रहते जागरूक होना, तंबाकू से दूरी बनाना और दूसरों को भी इसके प्रति सचेत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अपने अतिथि हमारे गेस्ट डॉक्टर मनीष गौतम जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सरल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। बस इसी संदेश के साथ अनुमति चाहूंगी, तंबाकू छोड़ें और जीवन से जुड़ें। जी, अब कार्यक्रम आरोग्यवाणी यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
1: देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रम

0: कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
1: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है, और उसको हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है, और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़े।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
2: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है, वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
3: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्योहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह

0: और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है और आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म मासूम से, युगल स्वर हैं अभिजीत और साधना सरगम के। गीतकार और संगीतकार है आनंद राज आनंद।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। अगला गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म गोपी किशन से। कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलंद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में

बल चैनल पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम चौपाल में सुनिएगा, ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं खरीफ फसलों की तैयारी। ये सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। डॉक्टर गोपाल लाल मीणा मृदा वैज्ञानिक डडवाड़ा कोटा से हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। आप यदि इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो प्रसारण के दौरान हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें और डॉक्टर गोपाल लाल मीणा से सीधे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 2941142 और इससे पहले कोटा का एसटीडी कोड 0744 जरूर लगाएं। तो सुनना ना भूलिएगा आज शाम 7 बजे से 7:30 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल। और अब अगले गीत की बारी। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी, अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना अवस्थी के मिले जुले स्वर हैं। समीर के इस गीत को संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

तो श्रोताओं, राजा हिंदुस्तानी फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने को हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी प्यारी सखियों और श्रोताओं को आपकी अपनी सखी प्रथमा का प्यार भरा नमस्कार। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। सखियों कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है और यही बात हमारे जीवन में बचत और प्रयास पर भी लागू होती है। बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि छोटी छोटी बचत और निरंतर प्रयास से हमें बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि हम रोज थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत डालें तो भविष्य की कई चिंताओं से हम बच सकते हैं। चाहे घर का खर्च हो, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या अचानक आने वाली जरूरतें, छोटी बचत हमारे लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। बहनों, हर दिन कुछ रुपए बचाना, बिजली बचाना, पानी, ईंधन बचाना, ये सब बचत ही तो है ना, जो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें आदत डालें छोटी छोटी बचत की। बचपन से ही जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें हर चीज़ का बचत करना हम सिखाएं। चाहे वो बिजली, यदि हम उस कमरे में नहीं है, वो जल रही है, तो बच्चों को सिखाएं कि उस कमरे से बाहर आने से पहले बिजली को बंद करें। चाहे वो पंखा हो, यदि घर के सदस्य हम अलग अलग कमरों में एसी कूलर चलाकर बैठे हैं तो सब एक जगह, संभव हो तो एक जगह बैठें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना और योजनाबद्ध तरीके से पैसों का उपयोग करना एक अच्छी आदत है। हम अपने बच्चों को शुरू से ही आदत डाल सकते हैं छोटी छोटी बचत करने की। और इसी प्रकार से क्यों, जीवन में सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती, निरंतर प्रयास ही सफलता की असली पूंजी है। यदि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखें, मेहनत करें और हार न माने तो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। ये नहीं आज कोई काम हमने आज शुरू किया तो शायद कल ही सफलता मिलेगी, नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे तो सफलता हमें प्राप्त होगी। संघर्ष के बिना सखियों सफलता प्राप्त नहीं होती, जो चाहे वह फिर एक विद्यार्थी की पढ़ाई हो, गृहिणी का आत्मनिर्भर बनने का सपना हो या किसी व्यक्ति का अपना व्यवसाय शुरू करना, हर बड़ी बात छोटे प्रयासों से ही शुरू होती है। सखियों, ये हम याद रखें कि छोटी बचत भविष्य को सुरक्षित बनाती है और निरंतर प्रयास सपनों को साकार करते हैं। इसलिए आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, छोटी बचत कीजिए, थोड़ी बचत कीजिए, नियमित मेहनत कीजिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए और लगातार बढ़ते रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में सही खानपान न केवल शरीर को ठंडक देता है बल्कि हमें ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है। आयुर्वेद में भी ऋतु के अनुसार आहार विहार को विशेष महत्व दिया गया है। इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा जांगिड़। आप असिस्ट

0: असिस्टेंट ऑफिसर मेडिसिन डिपार्टमेंट राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत है। तो डॉक्टर उषा जांगीर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ग्रीष्म ऋतु की हम यदि बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है कि गर्मियों के मौसम में आयुर्वेदिक हिसाब से क्या खान पान हो, कैसा रहन सहन। तो आइए बातचीत की शुरुआत आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर उषा जांगीर के साथ। डॉक्टर उषा, गर्मियों के मौसम में आयुर्वेद को किस तरह से देखा जाता है?
1: आयुर्वेद में हमारे 6 ऋतुएं मानी गई हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत।
0: जी,
1: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो होती है उसमें सूर्य की किरणों का ज्यादा प्रभाव होता है। वो ना केवल वातावरण पे होता है बल्कि हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रुक्षता और तीक्ष्णता बहुत अधिक बढ़ जाती है, पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि सूरज का काम है पानी को अपनी ओर खींचना। जिस तरह से पानी बाहर तालाबों में भरा हुआ रहता है और सूर्य की किरणों से वो भी सूख जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर का पानी भी, जितना 70-80% हमारी बॉडी में पानी है, तो वो भी सूर्य की किरणों से कम होने लगता है, स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है, प्यास ज्यादा लगने लगती है हमें।
0: जी,
1: इस तरह से हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ने लगती है और तेज गर्मी का प्रभाव दिखने लगता है।
0: गर्मियों के मौसम में आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं?
1: ताप बढ़ने लगता है तो पसीना आने लगता है, पसीने के कारण स्किन की बहुत सारी डिजीज होने लगती है, खुजली होने लगेगी, फंगल इन्फेक्शन होने लगेगा, फंगल इन्फेक्शन के साथ में घमोरियां होने लगेंगी, इसी के साथ में डिहाइड्रेशन का जो मैंने बताया अभी, रुक्षता बढ़ जाती है तो चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे ही हम बाहर धूप से डायरेक्ट एसी में गए
0: जी,
1: तो एकदम से क्या इम्यून सिस्टम हमारा चेंज होने लगता है, तो एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बार बार जुकाम होना, छींके आना, गला खराब होना, खराश होना, और साथ में फ्रिज का ठंडा पानी हम यूज लेते हैं गर्मी में, तो एकदम से ठंडा पानी यूज लेने पे मंदाग्नि हो जाती है, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। जो भी हम आहार करते हैं उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, ढंग से पाचन नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, भूख नहीं लगती, तो इन सभी समस्याओं का सामना हमें गर्मी में करना पड़ सकता है।
0: जी, क्योंकि मौसम तो कोई सा भी हो वैसे भी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, पर खासकर हम गर्मियों की बात करते हैं तो इसमें शायद कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में खान पान को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: हमारे आयुर्वेद में खान पान के ऊपर बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस तरह से आहार लिया जाए। आहार मतलब अशीत, पीत, लीड और खदित। अशीत मतलब खाना, पीत मतलब पीना, लीड मतलब चाटना और खदित मतलब दांतों से काटना। तो गर्मी की ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, क्या असीत में क्या क्या चीजें आती है, जैसे जो भी हमारे मार्केट में अभी फ्रूट्स वेजिटेबल आ रहे हैं, लौकी, टिंडा, तुरई, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, जितने भी पानी वाले फल हैं मार्केट में, सब्जियां हैं, वो सब यूज में लेनी है। पेय मतलब पीने वाली चीजें, हमें क्या पीना चाहिए, राबड़ी बना के पीनी चाहिए, शरबत का यूज करना चाहिए।
0: और राबड़ी के लिए तो कहा गया है कि तो गर्मियों के मौसम में अमृत समान है,
1: अमृत समान है, मल्टी न्यूट्रिएंट है ये, तो साथ में शरबत लेना चाहिए, खस का शरबत हुआ, उशीर का शरबत हुआ, चंदन का शरबत हुआ
0: जी,
1: और साथ में सौंफ का पानी हुआ, धनिये का पानी हुआ, बेल का शरबत हुआ।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा सौंफ का पानी लेना चाहिए, तो ये किस तरह से लें?
1: सौंफ का पानी लेने के दो तरीके, अब पेय में भी आयुर्वेद में डिस्कशन बहुत अच्छा किया गया कि पीने की चीजें चार तरीके से ली जा सकती है। वो है स्वरस मतलब रस निकाल के, कल्क मतलब थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, और हिम मतलब ठंडा, रात में भिगो के सुबह उसको मसल के आप उसको ठंडा ही यूज लेंगे, और एक फांट कि चाय की तरह उबाल कर।
0: जी,
1: ये हमारी चार विधियां बताई गई है पेय के लिए।
0: जी,
1: पर विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में हमें पीना चाहिए वो हिम मतलब ठंडा करके, धनिया या सौंफ कम रात में भिगो के रख देंगे और सुबह उसको मसल के उसको वैसे ही बिना उबाले ठंडा ही धागे वाली मिश्री डाल के हमें लेना है, तो वो पित्त को कम करती है।
0: तो क्या ये महिला, पुरुष, बच्चे हम किसी को भी दे सकते?
1: बिल्कुल, ये सबके लिए सेफ होती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, ताप बढ़ रहा है, सभी के लिए समान रूप से बढ़ रहा है, और विशेषतया ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो और महिलाओं के लिए प्रयुक्त की जाने चाहिए।
0: ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम किस तरह से अपने शरीर का जो ताप बढ़ता है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करें और कौन से वो खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन ना करें?
1: आयुर्वेद के अनुसार जैसे मैंने बताया पेया, पीने वाली चीजें ज्यादा लेनी चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी से पानी कम हो रहा है, वो स्वेटिंग के रूप में, स्वेद के रूप में बाहर निकल रहा है। छाछ आप ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, नारियल पानी ले सकते हैं। दूर्वा स्वरस आता है मार्केट में, दूर्वा मतलब घास होती है, घास शीतल घास है ना, उसका स्वरस ले सकते हैं, आंवले का रस ले सकते हैं हम, और मधुयष्टि जैसे

0: से मुलेठी जिसे हम कहते हैं भाषा में, उसका उसको रात में भिगो के आप सुबह उसका हिम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे पित्त की उष्णता को कम करता है। तो खाने के लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो तुलसी का प्रयोग कैसे हम करें, ये जरूर जानना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, तुलसी का प्रयोग ना केवल उसका रस का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि उसका लेप के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: लेप का किस तरह से करें?
0: जैसे स्वेटिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो वहां पे बहुत अच्छा रोल होता है तुलसी के पत्र का लेप करने से।
1: जी,
0: ये विशेषज्ञ भी माना गया है आयुर्वेद के अनुसार, तो वो खुजली को वहां से रिमूव करता है, एक तरह से डिटॉक्सिफाई करता है।
1: तुलसी के पत्तों को पीस कर उसका लेप लगाने से। और उसे कितनी देर के लिए छोड़ दें?
0: उसको सूखने तक हमको लगाना है।
1: हाँ,
0: सूखने के बाद में ठंडे पानी से उसको हटा देना है।
1: बहुत ही कारगर तुलसी, इतने अच्छी औषधि है, ये वाकई कई लोगों को पता नहीं होता।
0: बिल्कुल, और इसके साथ में हम चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेप के लिए भी कर सकते हैं हम इसको यूज, फेस पैक के रूप में भी कर सकते हैं, घमोरियों में भी यूज कर सकते हैं, डस्टिंग पाउडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसका, और साथ में इसका शरबत भी यूज कर सकते हैं। गर्मियों में स्नान एक नहीं दो बार भी आप कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: कोई निषेध नहीं है, स्नान करना बहुत जरूरी है। और साथ में सत्तू का सेवन, सत्तू जो हम भुने हुए गेहूं होते हैं, जो होते हैं भुना हुआ चना होता है, उसको पानी में घोलकर आप मिश्री डालकर, अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री को अवॉइड करेंगे, उसको घोलकर आप पियेंगे, एक मल्टी न्यूट्रिएंट का काम डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए बहुत अच्छा ये पेय बन जाता है।
1: जी जी, ये हुई खान पान की बात, और किन चीजों को खाने से हम परहेज करें ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, जैसे गर्मी का सीजन बताया गया है, उष्णता वाला सीजन,
1: जी जी,
0: तो इसमें हमें जो अवॉइड करना है वो है बेसन, स्पेशली जो गर्म चीजें हैं, तला भुना, मिर्च मसालेदार चीजें अवॉइड करनी है, मैदा की चीजें अवॉइड करनी है, और पानी, मतलब पानी आपको प्रॉपर मात्रा में 8 से 10 ग्लास तो लेना ही है।
1: कई लोग तो बहुत सारा पानी पीते हैं, लेकिन कई की आदत में शुमार नहीं होता, मतलब प्यास ही नहीं लगती, तो उस सिचुएशन में क्या करें?
0: उस सिचुएशन में हमें अपनी जैसे जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसको, हम जैसे सब्जी ले रहे हैं हम, तो सूखी ड्राई सब्जी नहीं लेके हम झोल वाली सब्जी का यूज करें।
1: जी जी,
0: जूसेस का यूज करें, जो रसदार फ्रूट्स आ रहे हैं उनका यूज करें हम,
1: तो
0: पानी की कमी को पूरा
1: कर देंगे। बात करते हैं हम फ्रिज के खाने की।
0: फ्रिज देखिए, फ्रिज का टेम्परेचर एकदम हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंपेरेटिवली हम करें तो बहुत कम होता है। जब भी फ्रिज का आइटम हम जब लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो एग्रीवेट हो जाता है, कोई भी अनजान चीज हमारी बॉडी में पहुंचती है, तो जो लो टेम्परेचर का प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी में पहुंचता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हिस्टामिन रिलीज करता है, मतलब एलर्जी, गले में खराश, बार बार छींके आना, अर्टिकेरिया, हाथों में ददोड़े बन जाना, ये सब चीज हो सकती है। और आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो मंदाग्नि क्रिएट करेगा, मंदाग्नि मतलब खाने का डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा, एसिडिटी होने लगेगी, भारीपन लगने लगेगा बॉडी में, और विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा।
1: वैसे तो कहते हैं कि साल भर ही फ्रिज का पानी से बचें तो अच्छी बात है कि हम मटकी रखते हैं घर में उसका पानी पिए, लेकिन जो आदत हो जाती है कि फ्रिज का पानी ही पीना है तो उसका विकल्प क्या है?
0: उसका विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है, मटकी का पानी। आप नई मटकी का पानी, नई मिट्टी से बना हुआ जो भी पात्र है उसका पानी का यूज करें, वो हमारे बॉडी के लिए एडेप्टिव है, कोई नुकसान भी नहीं करेगा, जो कि फ्रिज का पानी, फ्रिज की कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज की आइसक्रीम, फ्रिज के कोई भी प्रोडक्ट, इवन हम सुबह लगाया हुआ आटा अगर फ्रिज में रख देते हैं, शाम को रोटी बनाते हैं, वो भी नुकसान करता है।
1: महिलाओं का प्रोग्राम है, खासकर महिला जगत, तो हम जरूर जाना चाहेंगे जो कि एक गर्भवती जो महिला है उसका खान पान और दिनचर्या कैसी हो।
0: गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्पेशली आयुर्वेद में बताया गया है कि सबसे पहले गर्मी में जैसे ही उष्णता बढ़ती है तो न केवल शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है।
1: जी,
0: और गर्भवती महिलाओं का तो वैसे भी मूड स्विंग होता रहता है, उनका मूड स्विंग ना हो इसके लिए उनको प्रॉपर रिहाइड्रेशन रखना है, खुद को प्रॉपर पानी पीना है, एएमएच की भी प्रॉब्लम नहीं हो, जो बच्चा गर्भाशय में रहता है वहां पे पानी रहता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, उसकी भी कमी नहीं होगी। सुबह उठें, हल्का व्यायाम करें, अच्छा एक दिन में 30 मिनट की झपकी लेना बिल्कुल अनिवार्य है
1: जी।
0: ये भी ग्रीष्म ऋतु में ही बताया गया है, केवल आयुर्वेद में
1: जी।
0: अन्य ऋतुओं में इसका निषेध किया गया है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है।
1: जी जी।
0: 11 से 4 के बीच में ना निकलें, बाहर अगर निकलना है तो सिर पे ओढ़ के निकलें कुछ, और तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, जो भी हमारे आम हुआ, केरी का पना हुआ, ये प्रॉपर चीजें अपने डाइट में शामिल करें।
1: एक हम बात करते हैं फलों की, तो हमने देखा है कि आजकल हर फल पूरे साल भर आता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब जिस ऋतु का फल है उस ऋतु में खाएं तो वो फायदेमंद होता है, तो कई लोग जैसे अभी हम सेब की बात करते हैं, सेब का मौसम नहीं है लेकिन कई लोग रोजाना खाते हैं, या कोई सा भी फल ले लीजिए जिसका ऋतु नहीं है वो रोजाना खाते हैं, तो उसके क्या नुकसान है?
0: उसके बहुत नुकसान है मैडम। जैसे एप्पल की आपने बात की, हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि

0: यहाँ की पैदाइश है या जिस मौसम के अनुसार है, अगर उसको उस मौसम के अनुसार ही हम लेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अगर वो फल साल भर आ रहा है, हम उसको ले रहे हैं, मतलब हाइब्रिड हो रहा है, वो ये सीजन नहीं है हमारे लिए, तो नई सीजन है, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ है उसकी पैदावार, वहां के लिए वो है क्योंकि वहां पे सर्दी रहती है, हमेशा सर्दी का मौसम रहता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार जो भी फल उपलब्ध हो रहे हैं उनको लेने चाहिए। हाइब्रिड फल अगर हम लेते हैं तो इम्यून सिस्टम पे प्रॉब्लम आती है, मंदाग्नि बढ़ती है, वही आम जो टॉक्सिक चीजें हैं वो हमारे बॉडी में बढ़ने लगती है और फिर आगे जाके वो अनेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे स्किन डिजीज कर देगी, इम्यूनिटी कम कर देगी, बार बार बीमार होना, जुखाम खांसी अर्टिकेरिया होना,
1: और शायद हम कहीं यहाँ समझ नहीं पाते कि हमें क्यों हो रहा है।
0: हम दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं, केवल दवाई एक उपचार नहीं है, हमारा आहार विहार हम जितना चेंज करेंगे, जो ऋतु के अनुसार हमारे फल आ रहे हैं, सब्जी आ रहे हैं, अगर हम रूटीन में वो यूज लेने लगेंगे तो अपने आप हमारी जो ऑटोइम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, वो अपने आप ही कम होने लगेगी।
1: इसीलिए तो हर ऋतु के हिसाब से अपना अलग फल बनाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इतने सारे फल इस सीजन के होते हैं। ये हुई हमारी गर्भवती महिलाओं की बात। एक लू, हीट स्ट्रोक, इससे बचने के लिए आयुर्वेद क्या सुझाव देता है?
0: इससे बचने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि लू लगना मतलब पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होना, बुखार सा लगना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें वही रिहाइड्रेशन करना है, मधुर स्निग्ध द्रव चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है। मधुर मतलब मीठी चीजें, द्रव मतलब लिक्विड चीजें, और स्निग्ध मतलब थोड़ी सी घी मिलाई हुई
1: चीज,
0: वो यूज करनी है तो हम लू के प्रभाव से बच सकते। उदाहरण है इसका जैसे केरी का पना हुआ,
1: जी
0: वो लिक्विड भी है, उसमें थोड़ा मीठा भी डलता है, और सत्तू हुआ उसमें थोड़ा हम घी डाल के भी यूज कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: जी, क्योंकि इसमें रुक्षता बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस को कम करने के लिए कुछ सूदिंग प्रोडक्ट हमको, हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो घी हम थोड़ा सा जैसे दाल में डाल के ले लिया हमने, सत्तू में डाल के ले लिया हमने, इस तरह से स्निग्धता रुक्षता को कम करती है।
1: और बात करें हम नवजात शिशु जिसने अभी अभी खाना शुरू किया है, तो उनको हम ऐसा क्या दे जो उनके लिए फायदेमंद भी और उनका पेट भी भर जाए?
0: उनके लिए हम तरबूज का जूस दे सकते हैं, खरबूजे का पना बना के दे सकते हैं, आम का पना बना के दे सकते हैं, केरी का पना जो होता है अगर वो लेने में दिक्कत होती है, केले का मेश करके दे सकते हैं उनको,
1: जी
0: अभी सीजन भी है इन चीजों का। और अभी खीर सबसे अच्छा सीजन है गर्मी का, कि चावल और दूध, दूध भी भैंस का, क्योंकि भैंस का दूध गाय के दूध की अपेक्षा ज्यादा स्निग्ध होता है, भारी होता है, और ये रुक्षता को कम करने वाला होता है।
1: जबकि अक्सर बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं कहते हैं गाय का दूध बहुत ज्यादा फायदेमंद।
0: बिल्कुल गाय का दूध फायदेमंद है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के लिए भैंस का दूध आप यूज करें, और बच्चे को खीर बना के आप दे सकते हैं, चावल की खीर, वो सुपाच्य भी होती है और गर्मी के सीजन में पथ्य मानी गई है,
1: वो बड़े भी खा सकते हैं।
0: बड़े भी खा सकते।
1: एक सामान्य हम बात पे चर्चा करते हैं कि जब किसी भी बीमारी के इलाज की बारी आती है तो कहते हैं कि आयुर्वेद में यदि हम जाते हैं, कोई डाउट नहीं है कि वो फायदेमंद होता है, लेकिन कहते हैं इसका बहुत धीमा प्रोसेस होता है।
0: धीमा प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेशेंट एक तो हमारे पास क्रोनिक स्टेज में आता है,
1: हाँ जी,
0: दूसरा वो अदर मेडिसिन लेकर आता है, केमिकल उसके प्रोडक्ट बॉडी में ऑलरेडी रहते हैं, जा चुके होते हैं। जब हम आयुर्वेद का इलाज स्टार्ट करते हैं तो वो इतना असरकारक इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो उन केमिकल से बाइंड अप हो जाता है,
1: जी।
0: दूसरा पुरानी बीमारी में पहुंचता है तो हम जितनी कोशिश करने के बाद भी उसको इतना ज्यादा आराम नहीं दे पाते हैं। तो हो सके जितना जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में, एक्यूट स्टेज में आयुर्वेद में आएंगे तो बिल्कुल आयुर्वेद 100% उसका इलाज है,
1: क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसा है कि नाम ही भरोसा है आयुर्वेद का।
0: चिकित्सा परामर्श से अगर आयुर्वेद की मेडिसिन ली जाए तो उसके कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अगर नेट पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक,
1: वो तो फिर कोई सी भी दवा हो कि हम बिल्कुल अनभिज्ञता से उसका उपयोग कर रहे हैं तो नुकसान होना ही है।
0: साथ में कई मेडिसिन है जिसका प्रॉपर यूज नहीं लिया जाता, ज्यादा मात्रा में यूज लिया जाता है। हर एक चीज की मात्रा डिसाइड की हुई है आयुर्वेद में, चूर्ण कितना लेना है, पीने का सिरप कितना लेना है, काढ़ा कितना लेना है, चटनी कितनी लेनी है, लेकिन लोग नेट पे देख के पेट उससे भरने लगते हैं। अब च्यवनप्राश की कम बात करें, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता, हर एक की डोज निर्धारित की हुई
1: है। गलत ज्ञान या आधा ज्ञान बहुत तकलीफ देता है, और खासकर हम दवाई में तो अपनी बिल्कुल गणित ना लगाएं तो बेहतर है। और इतनी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, अब जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो बहने सुन रही है, उनके लिए कोई खास संदेश?
0: खास संदेश यही है, गर्मी में खुद का बचाव करें, परिवार का बचाव करें, लिक्विड चीजें लें और स्निग्ध चीजें लें और धूप में ना निकलें।
1: डॉक्टर उषा जांगीड़, आप हमारे

0: स्टूडियो में आए और गर्मियों के मौसम में खासकर आयुर्वेद के हिसाब से कैसा खान पान हो, कैसी दिनचर्या हो, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और 100% हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो श्रोता सुन रहे हैं, वो लाभान्वित होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कोटा आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: नमस्कार। सखियों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता, जिसका विषय था गर्मियों में आयुर्वेद के हिसाब से खान पान, और विषय विशेषज्ञ थी डॉक्टर उषा जांगिड़।

सखियों, समय समय पर महिला जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं और आज बात करते हैं शी बॉक्स की। सखियों, शी बॉक्स भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की जा सकती है। यह सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है। सखियों, इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकती हैं, कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आप पा सकते हैं। इतनी सारी जानकारियां होती है सखियों, पर जरूरत है अवेयरनेस की। थोड़े से हमें अवेयर रहना चाहिए हर कार्यक्रम के प्रति। यह पोर्टल महिलाओं को सुरक्षित, गोपनीय और आसान तरीके से शिकायत करने की सुविधा देता है। इसे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। सखियों, इसके बाद बात करते हैं हम कि तेज धूप, भीषण गर्मी से हम अभी सभी परेशान हैं और कहीं ना कहीं हम शायद थोड़े से जिम्मेदार हैं कि इस पर्यावरण को हम संभाल के नहीं रख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल हमारी, आप समझिए कि हमारा कर्तव्य समझिए, हमारी ड्यूटी समझिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति और हमारे आसपास के वातावरण की रक्षा करना ताकि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव जीवन सुरक्षित रह सकें, यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सखियों, ये हम सब बेहतर जानते हैं क्योंकि आज दूर दरख्तों की छांव के लिए हम तरस जाते हैं। कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो किसी एक पेड़ की छांव के लिए हमें बहुत किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है, तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ, पानी व बिजली की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल कोशिश करें कि कम से कम करें, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। पर्यावरण सुरक्षित करें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए।

लिए, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए। तो सखियों, महिला जगत का कार्यक्रम आज यहीं तक। ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलना लाभदायक होता है। तो आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी प्रथमा को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आपने ट्यून किया है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: सुनकर आप मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी। बिल्कुल, बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: वाद्यवृंद बनाना, वो भी उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता
1: है। 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
0: अच्छा, गामा पादा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।

0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
0: हाँ।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। बट हाँ, बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं। और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी, जी, जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था, मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं, पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या हाल होता।
1: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड़ नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी,
1: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी। रंगी पर

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के

0: मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी ला बा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: जागो
1: वाह वाह वाह वाह
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना।
1: बिल्कुल,
0: और वो 4, 4:30 बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल।
0: सो उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली आई बॉर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी,
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, व्हाटएवर। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th-6th standard की बात बता रहा हूँ
1: जी जी।
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30-8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग, तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बाजरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि

0: आकाशवाणी छुट्टी होती थी दोस्त, सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे, फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज
0: अनुशासन
1: करते
0: से,
1: हुए
0: रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है?
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं

0: जिंदगी बनी
1: जी।
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी।
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है। ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है।
1: बिल्कुल।
0: ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है त्रिपुरा बांसुरी
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी।
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी
0: देखो ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ।
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का होल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके
0: है, उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी। बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: है। हाँ, बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता।
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें खैर मेरे साथ मेरे हमेशा साथ रहता है।
1: वाह
0: हमेशा
1: क्या प्यारी बात।
0: हाँ ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था जो तीव्र माँ का ये है
1: जी।
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है।
1: हाँ है,
0: है ना
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक

0: खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: तो वो, बिल्कुल सही,
0: वो देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है

0: फर्जी आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कुछ सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
0: जी,
1: तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे

0: जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
1: हुलिया इरे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी,
0: तो वैसा था। तो फिर ऐ दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
0: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल।
0: हो तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
1: जी।
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
1: अरे वाह,
0: इन द टीम। यस,
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर। अच्छा। ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है। हाँ। तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
1: इशारा किया था
0: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते
0: हैं। स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने। और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक।
1: हाँ।
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुर चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी। तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: कंपोजिशन
0: है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के, हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहां जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे,

0: बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा, शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है।
1: हाँ,
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा, फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इंप्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति, सब बैठे हैं एक रूम में तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
0: था। वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गजल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी।

दिली धड़कन कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा

नॉन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो कि है ये मिलन ख्वाब सा इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों राग मुहब्बत करते
0: हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से ये नज्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102 और 103.6

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के

0: रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?

0: مشق
1: होशियार
0: समझदार
1: पेंसिल तराश
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर सोचिए और बताइए वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे
1: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे
1: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर ध्वनियांकन मयंक कुमार निर्देशन विमलेश चौधरी निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी
4: साथियों सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा
5: साथियों मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे
6: जी पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं। क्या घर की याद नहीं आती
6: हाँ याद तो आती है परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं हो नहीं सकता
5: तो देखा साथियों ऐसे हैं हमारे सैनिक हमें इन पर नाज है
7: वाह अरे वाह क्या बात कही है
6: क्या बात है
7: सुनकर ही जोश आ गया
6: हाँ
7: भाई विक्रम तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े संभल कर रहना भाई
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त तुम चिंता बिल्कुल मत करो मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है

0: इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परम वीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है।

0: आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो, दुर्गा माता की जय।
1: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
0: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
0: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं

0: जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।

0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिने तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की।
3: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था, तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी, सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
0: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
3: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
0: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं।
3: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 kHz पर। दोपहर के 12:30 हैं। श्रोता अब सुनेंगे विविध भारती सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, योगेश के बोल है, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपने पराये फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की

0: सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद हैं। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सीबीआई 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटन्स 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: उसका हो जाता है हीरा, रा ही, ही रा, तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, जो भी याद आए जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सा शब्द है जो उसका उल्टा है लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नामी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का

लाभ बिल्कुल सही है, हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु धूम, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे जी, बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या काए बोरातनर वा पाए बोराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा रा हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियां अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती दूसरों की कदम के लिए, अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए। साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु। इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख की जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खोना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी

बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं, उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार।

क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे। डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वही पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूं इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूं, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूं। बहुत सही बात कही है पिताजी ने। कहा था बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है। सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना, वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए। सही,

हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है,

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत कम बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था तो पापा

0: कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में 3 बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ। कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए, बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो, अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, वंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ। मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर जरूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है। उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी है, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दी है। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं है? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहां काड़ वहां हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूं और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे

श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है, और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है जी। मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीजें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटो स्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता

लगता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है। हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए अच्छा है।

क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा।

0: समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में

0: सात दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना

0: और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
2: Businesses and between the people of the two countries.

0: मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: और सखा को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। आजकल पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
1: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
2: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
1: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना, इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
2: बिल्कुल,
1: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
2: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं, तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
1: बिल्कुल
2: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है, तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
1: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं,
2: बिल्कुल,
1: और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
2: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
1: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
2: जी,
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
2: हल्का
1: वगैरह।
2: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
1: तरह तरह के व्यंजन
2: जी,
1: तरह तरह के चावल,
2: तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
1: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल,
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में, तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
2: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना, तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है, ये
1: आप क्या सोचते हैं,
2: क्या सोचते हैं इसके बारे में,
1: इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
2: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण, अब जो घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
2: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या

0: है इसके है? और सकारात्मक क्या है, और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
1: तो तरह तरह की साड़ियां आज कहाँ चलने वाले हैं।
0: आज हम साड़ी लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है।
1: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
0: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
1: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी,
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से

0: तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
1: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए,
0: गरिमामय लुक आए।
1: तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
0: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं
1: जी।
0: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
1: जी,
0: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्निक अपनाई जाती है।
1: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
0: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
1: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
1: जी।
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
0: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत मेहनत है,
1: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
0: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
1: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए।

0: इन्हें हमेशा अलग से धोइए। ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है। कम आंच पर उल्टी तरफ से ही स्त्री इसे घरना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: ख्याल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ,
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है। बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल, और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी, और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है वो भूलने लगते हैं।

0: चीजों
1: हाँ, को। ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
0: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है और लगातार छोटी

0: ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे तो, गेम बना रहे हैं ना वो लोग
0: जी,
1: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
0: हाँ,
1: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आए नेट की आंधी, सब उसमें उड़ चले। उसने इससे सीखा, उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्म दिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है, फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए।

0: ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पे खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकल आई आपके, ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
1: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीजें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीजें को करें, तो कोई चीज इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश, हम तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
1: बिल्कुल सही
0: का।
1: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
0: जी,
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
0: जी,
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नई सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती है ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है, बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल करना
0: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
1: जी।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है वो उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता, तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: है। खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से 1/2 कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, 1/2 कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग

0: स्पून किशमिश और एक कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें, जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर एक गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा, ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है, आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं, जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए। और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो अब बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय है, हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई

0: मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू ट्वेल्थ। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेड्सकेप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
1: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
0: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और ट्वेल्थ के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला, एप्रिन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया, जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है, और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?

0: ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो, तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्किप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बड़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बड़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको इम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे, ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे, 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ, जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी

0: हुआ, और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अब के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है, जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंपलिसिटी था, और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा. और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है, वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता.
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा.
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं.

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वो स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन अगर कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स, तो यू नो उस टाइम जो इसका है। तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में।

0: तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
1: जी जी,
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं, अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियो पल्मनरी रिसेसिटेशन, कार्डियो

0: अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था,
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है। तो
1: लोगों में
0: उस
1: ये अवेयरनेस आई है
0: अवेयरनेस बहुत
1: कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम सीपीआर, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं। हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1 2 3 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं। तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं। या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो वैसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा, जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है.

0: तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था, तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी, मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली। तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं,
1: प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं। और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहां पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके। तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर। 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है, अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया, चैट जीपीटी में, चैटजीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑल द मोस्ट 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
1: जी।
0: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए,

0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है। और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे। जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी, मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं
0: एज अ चाइल्ड
1: ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है, पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिस

0: की वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है। तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हो, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं। और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर। सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं। वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी,
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये बहुत बड़ा चीज है। और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलो।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं और आगाज होगा अब युवाओं के दैनिक कार्यक्रम, पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी का।

0: तो नमस्कार दोस्तों, शाम के इस प्यारे से वक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो युवाणी में। मैं हूं रजत
1: और मैं हूं चेष्टा। दोस्तों, हम आ गए हैं वापस अपने कार्यक्रम युवाणी में आप सभी के लिए बहुत सारी बातें और नई नई जानकारियां लेकर।
0: दोस्तों, दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, शाम का समय हमेशा थोड़ा सुकून लेकर आता है। और अगर इस समय साथ में अच्छी बातें और अच्छा साथ मिल जाए तो पूरा दिन और भी खूबसूरत लगने लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा रजत। और अगले कुछ मिनटों तक हम आप ही के साथ रहने वाले हैं। कभी हंसी मजाक करेंगे, कभी दिल से दिल की बात करेंगे और कभी ऐसी बातें भी करेंगे जिससे आपके चेहरे पर जो है स्माइल आ जाएगी।
0: तो दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा ठहर जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए,
1: क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
0: तो करते हैं शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: चेष्टा, अगर मैं कहूँ कि आज मैंने खुद से एक बहुत शानदार शायरी लिखी है,
1: तो मैं कहूंगी कि अगर तुमने लिखा ही है तो उसे बोलकर बताओ, देर किस बात की है?
0: अरे नहीं नहीं, पहले इरशाद बोलो।
1: अच्छा, इरशाद इरशाद।
0: तो सुनो, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए।
1: अच्छा, ये तुमने लिखा है। ये तो बॉलीवुड का एक सॉन्ग है, कुछ कुछ होता है।
0: यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों, आजकल लोग इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना कि कभी कभी ओरिजिनलिटी छूट जाती है।
1: एग्जैक्टली कोई हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा है, कोई कैप्शंस कर रहा है, और कुछ लोग तो एग्जाम में दोस्तों की हैंडराइटिंग तक कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
0: लेकिन असली मजा तो तब है जब इंसान अपनी सोच से कुछ नया बनाए।
1: बिल्कुल सही।

0: का एक्चुअली लोग ना क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना कभी कभी इंस्पिरेशन और कॉपी में फर्क भूल जाते हैं
1: और तभी तो उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है।
0: तो दोस्तों क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक तक सीमित नहीं है। हाँ। नई सोच, अपने तरीके से काम करना, प्रॉब्लम का अलग से कोई ऑथेंटिक या कुछ अलग से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उसका सोल्यूशन निकालना, ये सब क्रिएटिविटी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे मजेदार बात कि हर इंसान में ना क्रिएटिविटी होती है, बस कई लोग कंपैरिजन के चक्कर में उसे दबा देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रजत। सोशल मीडिया पर किसी की वीडियो देखी, किसी का स्टाइल देखा तो उसी को तुरंत वो कॉपी करने लग जाते हैं, लेकिन जो चीज आपको सबसे अलग बनाती है वो है आपकी ओरिजिनलिटी।
1: तो दोस्तों सृजनात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका नई चीजें ट्राई करना है। कभी लिखिए, कभी डूडल्स बनाइए, या फिर कभी कोई कहानी सोचिए। और हाँ, अपने विचारों को लोग क्या कहेंगे के डर से मत छोड़िए,
0: क्योंकि दुनिया कॉपी को जल्दी भूल जाती है लेकिन ओरिजिनलिटी को हमेशा याद रखती है।
1: दोस्तों इंस्पायर्ड होना अच्छी बात है लेकिन अपनी पहचान बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अपने आइडियाज पर भरोसा रखिए, कुछ नया सोचिए, क्योंकि क्रिएटिविटी ही वो ताकत है जो इंसान को सबसे अलग बनाती है।
1: तो दोस्तों आज का सिंपल सा मैसेज यही है कि कॉपी करना बंद कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दीजिए। तो इसी के साथ आपको एक और बार सुनाते हैं एक नया गीत।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आकाशवाणी अपने रेडियो सफ़र का 90 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मैं रजत मेहरा और मेरे दोस्त स्वर्णिम ने कुछ युवाओं की राय इस बारे में जानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं।
1: दोस्तों, एक वक्त था जब जिंदगी इतनी तेज नहीं भागती थी, जब लोग स्क्रीन्स में नहीं आवाजों में जिया करते थे, जब शाम होते ही घर के कोने में रखा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ ले आता था।
0: सुबह की पहली चाय के साथ खबरें, दोपहर में मधुर गीत और रात को कहानियां। आकाशवाणी सिर्फ सुनाई नहीं देता था, महसूस होता था।
1: किसी के लिए रेडियो बचपन था, किसी के लिए देश दुनिया से जुड़ने का जरिया। कहीं क्रिकेट कमेंट्री सुनते हुए धड़कनें तेज होती थी, तो कहीं बिना का गीत माला के गीतों पर यादें मुस्कुराती थी।
0: और जब बिजली चली जाती थी, तब भी रेडियो की आवाज अंधेरों में रोशनी बन जाती थी।
1: वक्त बदला, तकनीक बदली, आवाजों की दुनिया पॉकेट में सिमट गई।
0: लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती।
1: आकाशवाणी उन्हीं आवाजों में से एक है जिसने देश को जोड़ा, हर शहर, हर गांव, हर दिल तक अपनी पहचान बनाई।
0: आज आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है। 90 साल यादों के, भरोसे के और उन लम्हों के जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।
1: और इसी सफर को महसूस करने के लिए हम आए हैं लोगों के बीच, जानने के लिए कि उनके लिए रेडियो क्या था, आकाशवाणी उनके लिए क्या था, और आज भी उन यादों की आवाज उनके दिल में कितनी गहरी गूंजती है। दोस्तों, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम खड़े हैं किशोर सागर तालाब में हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं।

0: तो आज हमारे साथ हैं
1: शशि प्रभा
0: और सी मेहरा। तो मेहरा जी आप बताइए कि आपके बचपन में रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस था?
2: बचपन से तो हम सुनते हुए आए रहे हैं, मतलब उस समय जब इसका लाइसेंस बनता था उस समय से हम सुनते हुए आ रहे हैं। 50 रुपए इसका लाइसेंस चार्ज होता था साल, जब से रेडियो सुनते हुए आ रहे हैं।
0: आपको याद है कि आपने पहली बार रेडियो कब सुना था?
2: बस मैं 7 साल के समथिंग का हूँ।
0: और अभी आपकी एज है?
2: 60 है।
0: आप आकाशवाणी सुनने का कोई खास यादगार मोमेंट हो आपका?
2: गाने सुना करते थे जैसे अमीन शाहनी के वगैरह, ये प्रोग्राम अच्छे आते थे, न्यूज भी मिल जाती है देखने को, हर चीज के बारे में जानकारी हो जाती है। पहले टीवी भी इतना नहीं था, तो रेडियो से सारा संपर्क था, पूरा उससे जुड़े हुए थे।
1: तो यही सुनते हैं जो किचन हुआ, किचन से रिलेटेड आता ना, प्रोग्राम आते है, अच्छी अच्छी बातें बताते हो, गाने वगैरह सुनते ज्यादातर।
0: आपको ज्यादा क्या पसंद है सुनना, न्यूज वगैरह या फिर सॉन्ग वगैरह?
2: पुराने सॉन्ग उसके साथ में न्यूज, वो भी कंटिन्यू में चलती है, और वो टहा के चलते थे, से कई प्रोग्राम है जो अच्छे लगते थे मतलब, और आज भी वही सुन रहे हैं। मतलब सुबह रेडियो 6 बजे हमारा चालू हो जाता है और जब तक लगभग 10 बजे तक चलता है हमारा।
1: एक होता हेलो डॉक्टर आता, वो भी अच्छा लगता है, बीमारियों से रिलेटेड, अब बैठे काम करते जाओ अपना और सब कुछ सुन लेते हैं।
3: और जैसे NTV इंटरनेट और पॉडकास्ट वगैरह का जमाना चल रहा है, तो ऐसे में आपके लिए रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस है?
2: रेडियो का इम्पोर्टेंट तो शुरू से ही रहा है और रहेगा,
1: जगह तो कोई नहीं ले सकता, रेडियो तो रेडियो ही है, उसमें तो उसमें घुस जाओ मोबाइल में तो, और इसमें तो काम करते रहो अपना और चलता रहता है अपना प्रोग्राम।
3: हाँ मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, साथ साथ चलता रहता है वो,
1: सुनते जाओ काम करते जाओ बस।
0: जब रेडियो सुनते हैं तो आप अकेले में सुनते हैं या फिर पूरा परिवार साथ में सुनता है?
2: विद फैमिली पूरी, वो भी है, वो भी रेडियो सुनना ही पसंद करती है। वो दिन में सुबह टीवी नहीं देखते हो, ना बच्चे देखते हैं ना कोई देखता हमारे।
3: अंकल आंटी, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मैसेज देना चाहेंगे आकाशवाणी को?
2: उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: तो आज हमारे साथ हैं
4: मैं माधुरी शर्मा,
5: मैं सिमरन माखीजा।
0: बताइए कि आपके बचपन में रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस था?
4: रेडियो ही सुनते थे पहले, ये टीवी और ये मोबाइल तो थे नहीं, और रेडियो पे गाने सुनना, न्यूज़ सुनना एक बहुत बड़ी क्रेज होती थी सबको, बस यही सुनते थे। धार्मिक प्रोग्राम भी सब सुनते थे रेडियो पर ही, और आकाशवाणी के थ्रू बहुत सारी खबरें आती थी, बहुत सारी बातें आती थी, बस रेडियो का तो काम नहीं है।
5: मेरी बेटी ने इसमें भी प्रोग्राम करा था, उसको भी प्राइज मिला था आकाशवाणी में, पुराने गाने अच्छे लगते थे।
4: बिनाका का प्रोग्राम आता था, बिनाका, फिर वो शिवाका में, शिवाका, फिर वो शिवाका के नाम से आता था, शिवाका गीत माला, वो हम
5: शिवाका भी आता था, वो भी बहुत अच्छा लगता था।
0: रेडियो से जुड़ी आपकी कोई ऐसी अच्छी सी याद हो जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ?
4: रेडियो से क्या, वो नवरंग सुनते थे, नवरंग आता था रात को, और यही बस गाने का ही सबसे ज्यादा क्रेज था, गाने और न्यूज।
0: रेडियो पे आपको सबसे अच्छी आवाज कौन सी लगती थी?
4: एक हरिओम शरण जी के भजन आते थे, वो सुनते थे।
6: मेरा नाम संध्या शर्मा, गुलाबबाड़ी कोटा से, और हंसी मजाक के टाके वाले सब चीजें सुनते थे। पुराने गाने सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे हमें, से किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इनके बहुत अच्छे गाने आते थे,
4: अच्छे प्रोग्राम आते थे, परिवार के साथ सुनते थे, कोई ऐसा वही था ही नहीं, गाने भी सुनते थे, न्यूज भी सुनते थे, हरिओम शरण जी के भजन आते थे सुबह सुबह, वो सुनते थे। और आज भी रेडियो का कोई मुकाबला नहीं है, जो रेडियो में जो बात थी ना, वो आज फोन, मोबाइल, टीवी कोई नहीं कर सकते।
5: कहीं भी गाड़ी में जाते अभी भी FM चलाती है।
4: जैसे कि रेडियो का जो सफर था वो बहुत अच्छा रहा, पुराना भी, और अब भी गाड़ियों में जाते तो हम FM ही सुनते हैं। रेडियो
6: में ऐसी पुरानी बातें, ऐसे कोई सीरियल्स वगैरह जो आते हैं वो पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, ऐसे कभी गलत चीज नहीं आई उसमें।
7: मेरा नाम रेखा गौतम है, मैं गाने सुनती हूँ आकाशवाणी पे, पसंद है, पुराने पुराने गाने आते हैं, माइंड बढ़िया हो जाता है, फ्रेश।
4: सारे गाने बहुत अच्छे आते हैं, पुराने पुराने गाने। मैं राधा सोनी बजरंग नगर से, बहुत अच्छे अच्छे, रेडियो को तो मुकाबला ही नहीं है, बहुत अच्छे आते हैं गाने भी, भजन भी, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है।
8: हेलो दोस्तों, मैं चारू सक्सेना फ्रॉम तलवंडी। रेडियो से बचपन से नाता रहा है, मम्मी को बचपन से मैंने रेडियो पर वेद भारती सुनते हुए काम करते

हुए गुनगुनाते हुए सारा सारा दिन रेडियो सुनते सुना था। धीरे धीरे ये रेडियो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनता चला गया। हम भी रेडियो के आदि हो गए। वो सुबह 6 बजे की पहली सभा शुरू होती थी और आखिरी सभा तक बस रेडियो ही रेडियो। क्या दिन थे वो भी। रेडियो पर आने वाले अगर मैं प्रोग्रामों की लिस्ट बनाऊँ ना तो इतने प्रोग्राम थे, लेकिन कुछ खास प्रोग्राम थे जैसे बिना का संगीत वाला, छाया गीत, एक दो अनाउंसर्स हुआ करते थे, कांता शर्मा, ब्रजभूषण जी, जिनकी मखमली आवाज़ें मुझे आज तक याद है, मेरे जहन में आज तक बसी हुई हूँ आवाज़ें। और रेडियो धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया उसका क्रेज़ भी हमारे संग बढ़ता ही चला गया। जब FM चालू हुआ तो नए नए गाने सुनने को मिले, बिल्कुल नई नई फिल्मों के गाने। जो पहला गीत मुझे आज तक याद है, मैंने FM रेडियो पे सुना था, पापा कहते हैं, खूब हंसे थे हम लोग कि ये भी कोई गाना होता है, देखो कितना सुपरहिट गीत बना था। ऐसे रेडियो के सुनते सुनते हम आज इतने बड़े हो गए कि रेडियो का और हमारा संबंध 40 साल का बन गया। आज रेडियो के ये जो अपना रेडियो है आज अपने 90वें वर्ष में प्रवेश कर गया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। थैंक यू। Oh,

0: नमस्ते श्रोताओं, अब हमारे बीच जुड़ चुके हैं
1: लक्ष्मी नारायण डंडोती है मेरा नाम है।
0: बिल्कुल सर, तो आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपके बचपन में रेडियो का इम्पोर्टेंस क्या था?
1: बचपन में तो मीडिया एक ही था, खबर सुनने के लिए या कोई काम, जो भी मैसेज होता था देश के अंदर वो रेडियो के थ्रू ही आता था। जैसे आकाशवाणी आता था और न्यूज के जो थे, बाकी म्यूजिकल प्रोग्राम भी आते थे, बिना का गीतमाला आती थी, विविध भारती आता था, वो प्रोग्राम आते थे, जो वही एंटरटेनमेंट के साधन थे। बिना का गीतमाला, अमीन सयानी का बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा होता था उस जमाने में। वक्त तो गाने ही सुनने का ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे विविध भारती आता था, फरमाइशी प्रोग्राम आते थे, ये यही प्रोग्राम होते थे जिनको सुनते थे, और तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं खबरों में उस जमाने में, इतना वो नहीं था। वो जो खबर आती थी वो सुन लेते थे, या कभी कभी कमेंट्री भी आती थी।
0: अभी जैसे आकाशवाणी के 90 साल हो रहे हैं और अभी के जमाने में इंटरनेट, तो ऐसे में आपको क्या लगता है रेडियो क्या एक महत्वता रहती है, आपका क्या ओपिनियन है?
1: रेडियो भी दो बैटरी, जिसके बैटरी वाले भी आते थे, इलेक्ट्रिक भी आते थे। बैटरी वाला ये है कि आप गाँव में भी वो चलता था जहाँ बिजली नहीं थी, और अब ये है कि ये तो मोबाइल पे और टीवी पे सारी विजुअल देख लेते हैं, तो इसलिए वो पहले लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था रेडियो का। जब तक लाइसेंस नहीं हो आप रेडियो नहीं रख सकते थे।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: मैं राजकुमार सक्सेना, स्वास्थ्य शिक्षा, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज कोटा, आकाशवाणी चंबल चैनल के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आकाशवाणी में आकाशवाणी प्रोग्राम लगभग 50 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आकाशवाणी के प्रोग्राम सभी को एक संबल और स्फूर्ति प्रदान करते हैं और ज्ञान भी प्राप्त होता है इससे। जैसे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, विविध भारती, कृषि संबंधी और अपने पशुपालन विभाग, सभी तरह की जानकारियां आकाशवाणी के चैनल से प्राप्त होती रहती हैं, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा माध्यम है। ये सभी को सुनना चाहिए, इससे सभी को लाभ प्राप्त होता है। आकाशवाणी से कई ऐसे समाचार या ऐसी जानकारियां उपलब्ध होती हैं जो अखबारों में और कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उससे पहले हम उन जानकारियों को अपने उसमें उतार लेते हैं और अपने जानकारी प्राप्त होती है। मेरा कहना यही है कि सभी को आकाशवाणी के प्रोग्राम जब भी समय मिले इनको सुनना चाहिए। इससे ऊर्जा का संचार होता है, स्फूर्ति आती है और रक्त संचार बढ़ता है, जिससे जीवन में आदमी को अकेलापन महसूस नहीं होता है। वह इस तरह के कार्यक्रम सुनेगा तो उसका हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं का समाधान भी होगा।

0: आज हमारे साथ हैं
1: योगेंद्र विजय,
2: राजेंद्र मीना,
3: दिनेश जैन,
4: डॉक्टर हिमांशु गोयल।
0: तो आप बताइए कि रेडियो बचपन में आप सुना करते थे, तो आपकी कोई बचपन की कोई स्पेशल याद हो रेडियो से जुड़ी हुई तो जो आप शेयर करना चाहते हैं?
1: शुरुआत में तो हम बचपन में बिना का गीत माला से शुरू करते हैं इस चीज़ को, तो हमारे 40-50 साल पुरानी बात जो भी है, क्योंकि मेरी उम्र भी 65 की हो गई है, 64 की, तो उस टाइम पे जो

0: 40-50 साल पुराने बाद जो भी है, क्योंकि मेरी उम्र भी 65 की हो गई है, 64 की, तो उस टाइम पे जो हमको एक ही रेडियो खोल देते तो एक ही चीज अच्छी लगती थी, बिना का गीत माला आएगी, उस टाइम पे वही चलता था, और अमीन सानी जो उसके आउट होते थे तो उसमें गाने सुनते थे।
1: कि जब शादी होती थी ना तो रेडियो ऐसा करेज था कि जब जमाई जाता था ससुराल में उस रेडियो को ले जाता था, बजाता हुआ गाने सुनते हुए, लेकिन अब कुछ नहीं ऐसा।
2: तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने वाले, तो आकाशवाणी का कोई ऐसा एक शो हो जो आपको आज भी अच्छा लगता हो या आप सुनते हो?
0: आकाशवाणी में एक हम देखते थे गांव से खेती से संबंधित
1: कृषि गोष्ठी,
0: कृषि गोष्ठी की या जो भी है, वो नाम प्रॉपर अगर आपको पता है तो ये बताया, तो वो शो बहुत अच्छा लगता था। उससे क्या लोगों को जागरूकता आती थी गांव से संबंधित, क्योंकि हम गांव से रहते थे, गांव से संबंधित थी कोई बात, तो इस टाइप की जो आती थी और चर्चाएं आती थी, हमको राजनीति रूप से भी कोई देखते थे, समाचार का इंतजार करते थे 7 बजे का आएगा, वो देखना है देखना है आकाशवाणी में। हम देवकी नंदन पांडे के, तो उनका वो न्यूज सुनने में बड़ा आनंद आता था, आवाज में इतनी मिठास, बोलने में इतना बढ़िया, तो अच्छा लगता था।
1: पूरा गांव रेडियो के सामने खड़ा, एक दो रेडियो होते थे पूरे गांव में, पूरा गांव रेडियो के सामने, और भाई कहे वो भी ये हो गया वो हो गया।
2: तो आपको क्या लगता है कि अभी की जो जनरेशन है वो रेडियो से क्या सीख सकती है?
3: रेडियो से तो, रेडियो ने प्रकृति के साथ साथ हमें रेडियो भी दिया है, और प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान रेडियो है। आज भी इसी माहौल में कोई संगीत सुनता है तो रेडियो चला के सुनता तो आनंद अलग ही आता है, बाकी और किसी चीज से लगाव नहीं है। आज रेडियो को मतलब जितनी भाषा में आप देखो, जो हम सुनते थे न्यूज से लेके आपको मतलब संगीत तक, और कोई दूसरे चैनल आते थे मतलब उसमें, तो उससे भी ज्यादा बहुत बढ़िया लगता था।
1: जितना मीडिया है ना, इन सबका दादा है वो, दादा है अभी भी रेडियो, और दादा रहेगा।
2: तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने वाले हैं, तो
4: उसके लिए बहुत बहुत बधाई,
3: बहुत बधाई आपको,
4: आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़ो और प्रगति करते रहो।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के,
3: और इससे बहुत बहुत हमें भी सहयोग मिलता रहे आप लोगों से, आप ही हो आने वाला भविष्य हमारा। हम तो पुरानी यादें आपको दे जाएंगे, लेकिन उन यादों को आप फॉलो करो या नहीं करो आपके ऊपर।
6: रेडियो के 90 पर रेडियो बहुत खुशी की बात है, मैं भी रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, उसको कम से कम 80 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी एज इस वक्त 85-86 साल है, तो उस वक्त भी रेडियो और अभी के रेडियो में बहुत फर्क है। अभी जो फरमाइशी प्रोग्राम आता है वो मेन टू मेन आता है, और पहले कई सारे नाम इकट्ठे हो जाते थे और फिर एक गाना जाके बोलते थे। उस वक्त जो थे वो अमीन सयानी सीलोन से और देवकी नंदन पांडे समाचार के लिए प्रसिद्ध थे, और अभी जो हम हैं, हम लोग हैं मतलब रिटायर्ड लोग, वो अपना टाइम पास करने काफ़ी टाइम रेडियो सुनने में बीतता है, जिसमें समाचार गाने, और कोटा रेडियो स्टेशन जो है वो कुछ प्रायोजित कार्यक्रम और जो है दूसरे कार्यक्रम की वजह से औरों के मुकाबले में जो कोटा में और चल रहे हैं, तो ये वाला प्रोग्राम आपके यहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी वजह से इनको सुनते रहते हैं।
5: और आप रेडियो कितना सुनते हैं?
6: दिन 24 घंटे में कम से कम 5-6 घंटे तो रेडियो सुनने में जाते हैं।
5: अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं आप?
6: बस, और ये आगे 90 हुए हैं इसको, और ये हजारों हजार आगे चलते ही है, यही शुभकामनाएं हैं।
5: धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कुछ युवा साथी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप रेडियो सुनते हैं या नहीं सुनते?
7: बचपन में मैंने बहुत सुना है दादाजी के साथ बैठ।
5: हाँ, तो अब जैसे इंटरनेट और पॉडकास्ट वगैरह का जमाना चल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि रेडियो की क्या इम्पोर्टेंस है?
7: आज का टाइम में जो जेंजीज के लिए लाइक उनको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है, बट एफएम रेडियो की अपनी अलग ही जगह है। आज बहुत सारे ऐसे जगह हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ पे मोबाइल नहीं, डिवाइसेस नहीं है, तो वहाँ पे पॉडकास्ट पहुँच नहीं पाता। तो एफएम रेडियो ऐसी चीज है कि लाइक जो हर जगह अवेलेबल है, छोटे से छोटे घर में आज भी रेडियो सुना जाता है।

0: जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जैसे इंटरनेट और पॉडकास्ट वगैरह पे तो अफवाह भी फैल जाती है, मगर उसके कंपैरिजन में रेडियो तो बहुत रियल लगता है।
1: विश्वास कर सकता हूँ रेडियो पे।
3: मैं भी ये मानता हूँ कि रेडियो सब जगह पहुंच जाता है कंपैरिजन में।
1: तो आज के हमारे प्रोग्राम का जो मेन पॉइंट है वो ये है, आकाशवाणी के 90 साल मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 90 साल में काफी कुछ बदला है। हम चिट्ठियों से आज AI की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के हिसाब से अगर आपको रेडियो में कुछ बदलाव लाना हो, पॉइंट हो, कुछ सजेशन हो, तो वो आप क्या देना चाहेंगे?
0: अगर मुझे मौका मिलता कि मैं रेडियो में कुछ बदलाव लाना चाहूंगा, तो मैं ये बदलाव लाता कि रेडियो को लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपडेट रखूंगा और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां जेंजी आके अपना टैलेंट शोकेस कर सके।
1: आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जैसे आजकल के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको परफॉर्म करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से रेडियो को उनको सपोर्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट है। तो नीरज, ऋषभ, धीरज, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपना पॉइंट रख पाए आप इस मंच पर।
4: मैं एडवोकेट अंश राय सक्सेना, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फादर आकाशवाणी काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं और उनको देख करके हमें भी आकाशवाणी सुनने की आदत लग चुकी है। चाहे फिर हम घर पे बैठे हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कार में हों, तो आकाशवाणी चंबल चैनल हम इस दौरान सुनते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एज आपको आकाशवाणी चंबल चैनल सुनना चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से आपको एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। और मैं यही कामना करूंगा कि आकाशवाणी चंबल चैनल ऐसे ही सालों साल चलता रहे और लोगों के दिलों में जगह बनाता रहे। थैंक यू।
1: दोस्तों, 90 साल का ये सफर सिर्फ प्रसारण का सफर नहीं था, ये भरोसे का सफर था, आवाजों का सफर था और उन यादों का सफर था जो आज भी दिलों में जिंदा है। आकाशवाणी सिर्फ सुना नहीं गया, महसूस किया गया। मैं हूं स्वर्णिम।
5: और मैं हूं रजत।
1: और आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष प्रस्तुति।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी अपने दो रेडियो दोस्त मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं रजत के साथ।
0: दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह की जिसे देखकर हर कोई मनमोहित हो जाता है।
1: हम बात कर रहे हैं जयपुर के फेमस जल महल की, जिसे वाटर पैलेस यानी पानी का महल भी कहा जाता है।
0: जल महल जयपुर के मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है, और ये महल से अगर हम देखते हैं यानी कि अगर हम दूर से देखें इस महल को, तो ऐसा लगता है कि ये जो महल है ना, ये पानी के ऊपर तैर रहा है।
1: अरे वाह, मतलब इसकी सुंदरता सुबह और शाम के समय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सूरज की किरणें जब झील के पानी पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि जल में कोई मोती उभर आए हों।
0: अच्छा,
1: और जल महल का दृश्य बेहद आकर्षित लगता है।
0: अच्छा रजत, वैसे तुम कभी देख रहे हो उसे?
1: नहीं, मैंने बस इसको फोटोज में देखा अभी तक।
0: अच्छा अच्छा दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो जल महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडितों के स्नान के लिए करवाया था।
1: और चेष्टा, क्या तुम जानती हो कि जल महल में 5 मंजिला इमारत है?
0: हाँ रजत, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि इसकी 4 मंजिले पानी के अंदर रहती है, और केवल जो ऊपर का हिस्सा है वही हमें देखने को मिलता है।
1: और यही बात इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है और खास भी बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इतने सालों बाद भी यह महल मजबूती से खड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, और इसकी बनावट उस समय की जो बेहतरीन इंजीनियरिंग है ना, वो इसमें हमें देखने को मिलती है।
1: और आज के समय में जल महल जयपुर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है।
0: और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करें,
1: क्योंकि कई बार यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं ना, वो कचरा जैसे चिप्स की पैकेट्स वगैरह या फिर प्लास्टिक बॉटल्स या फिर ऐसे कोई भी कचरा फैला देते हैं, और इससे यहाँ का पर्यावरण और वातावरण बहुत ज्यादा खराब होता है।
0: इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, पर्यावरण की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमारी विरासत ही हमारी पहचान है,
1: और हमारी विरासत की साफ सफाई का ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महान नेता के बारे में जिन्होंने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था।
0: इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो प्रसिद्ध वकील थे और इनके माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था।

0: अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की थी और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे।
1: इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की और फिर
0: कानून की पढ़ाई भी की थी इन्होंने, है ना, ऐसा मैंने सुना हुआ इनके बारे में। और पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहरू जी भारत लौट आए और फिर वकालत उन्होंने शुरू करी थी, है ना। लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है कि उनका मन केवल वकालत तक ही सीमित नहीं था, वो देश की आजादी के लिए भी कुछ करना चाहते थे।
1: और इसी दौरान वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: बिल्कुल, और नेहरू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने देश के लोगों को एकजुट करने का काम किया था।
1: तो दोस्तों 15 अगस्त को 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
0: बिल्कुल, और उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी के माध्यम से देशवासियों को नए भारत का सपना

0: दिखाया था।
1: नेहरू जी ने भारत को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला देश बनाने का प्रयास किया था।
0: उन्होंने बड़े बड़े उद्योग, बांध, कारखाने और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया था और आज के कई बड़े संस्थान जैसे कि IIT और वैज्ञानिक संस्थाएं उनके सपनों का हिस्सा है।
2: नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे भी इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे।
0: बिल्कुल, और इसी कारण हर साल 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पर भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू जी को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था, ऐसा मैंने उनकी जो बायोग्राफी है उसमें पढ़ा था। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री शामिल है। और एक और बात बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो सम्मान होता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
2: अरे वाह। और 1970 में उन्हें मरणोपरांत विश्व शांति परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: चलिए दोस्तों, आपको अवगत कराते हैं आज के करंट अफेयर्स से।
1: हाल ही में अमेरिका देश के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबिया ने भारत का दौरा किया है।
0: और हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
1: हाल ही में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में आमा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू की है।
0: और हाल ही में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में आमा दीदी बहिनी बसु सेवा शुरू की है। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है।

0: दोस्तों, आज का ये शाम का सफर चलते चलते कब खत्म होने की कगार पे आ गया
1: हमें पता ही नहीं चला है ना।
0: तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि हम फिर आएंगे। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें फिर से आना है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए।
1: दीजिए इजाजत अपने दो रेडियो दोस्तों, मैं चेष्टा गौतम
0: और मैं रजत।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग

0: उद्योग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज पहला नगमा आप सुनेंगे फिल्म मेट्रो से।

फिल्म नमस्ते लंदन से अगला नगमा आप सुन रहे हैं राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाजों में। जावेद अख्तर ने बोल लिखे हैं, संगीत हिमेश रेशमिया का।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार एवं जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर केंद्र से।

0: थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव

0: अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। पीएम

0: चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में, श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है। दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
4: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार।

परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा

0: अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेच नहीं जाता, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृहमंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने को कहा ताकि घुसपैठ, तस्करी अतिक्रमण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें

0: राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
1: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी और RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा यह जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया।

0: दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिलास्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरुआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जायेगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घणघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली राते राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवारा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवन रो काम 4 जून सरू भैला। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्य रा घणखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर माए सब बत्तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापीचियो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माई अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोणा कम से कम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि भगती जोरदार गर्मी रही। इन बीच प्रशासन

0: रिवोरू गर्मी रो सामो करण सारू जरूरी इंतजाम करिया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सगला महकमा न तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराऊ जिंदगी माथ घणो असर पड़ रो है। माणा झुंझुनू खबर नवीस बतायो के जोरदार तावड़ाऊ दिन री बगत बाजारा माए लोगा री आवन जावन कम वेगी है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: इबीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बधती गर्मी और लू रा असर न ध्यान राखता थका जनताओं सावचेती राखण रियरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवन री दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वे बच्चा बुजुर्गा और मांदा लोगा रो खास ध्यान राखण और जोरदार तावड़ा री बगत कठे नी जावन सारूई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारूए दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज कीनी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर बीकानेर फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजन सारू चेतायो है। इसागे कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारूई चेताई चियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो कि एसआईआर रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावनु हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लारला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए एसआईआर करावन री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका वो फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट उन जुड़िया दिशा निर्देशा माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो कि इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगा पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वह कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। राज्यपाल कहो के कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करणो कई हल्का माए कामयाबी मिल सके है। ये मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के जनता ने न्याय दिरावन सारू जूना कानून बदल और तीन नुआ कानून लाई चिया। कार्यक्रम माए 9 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजी चिया, जबकि 25,000 बत्ता विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां दीरी ची। करौली जिला माए लाडला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावन सारू न्यारी न्यारी कोशिशा करी ची है। जिला री मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावन पानी बचावन रा काम ने मजबूती मिली है। काम वाला रो कहनो है कि केंद्र सरकार री पहलू हल्का माए बिरखारो पानी भेड़ो भेवनु जमी हेठे पानी रो लेवल ऊंचो आ रियो है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेच नहीं जाता, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस न जारी राखण री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रुपया राखी चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन योजनाओं राज्यां री एजेंसियां ने एक उन दूजा राज्य माए अनाज लावण ले जावण माए मदद मिले।

0: पहला
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथा हिफाजत रा और पुख्ता इंतजामात करण सारू काल बीकानेर माए सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग माए सरहद कनेरा हर जिला सारू चारी मेर निजर राखण वालो सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सरहदों 15 किलोमीटर ताई रा हलका माए गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुकम दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण माथे जोर दीनो। गृहमंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार हेवन वाला अपराधा माथे रोक लगावण सारू बीएसएफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रातेत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करती नी है। इनमाए राज्य सेवा वारा 192 और अधीनस्थ सेवा वारा 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो के आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां 4 जून 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। ई परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी नए जारी करतियो चियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर माए बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इस दौरान मोटी तादाद माए अमानक बीज जब्त करी चिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जा बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट जीओटी करायो जा वेला।
2: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रातेत आज गौशाला में ढंडारा अस्पताल और दूध उत्पादक संघ में खास अभियान चलाई चियो। इस दौरान पानी पर्यावरण और गायों ने बचावन जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा गौशाला में माए पौधा रोपया और परिंदा सारू परिंडा बांधिया। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलूम्बर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला माए साता देवण उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखण रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत 3 दोषियां री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो कि निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा माए कोई बदलाव नहीं करियो चावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रातेत मिलर यौन दुराचार करण यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी करती नो। आईपीएल क्रिकेट होड माए आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ माए सरूफ हेवन वाला ई मुकाबला माए जीतन वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला माए गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद माए खेलो जावेला। इनु पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स ने 92 रनों हरार फाइनल में पूग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश रा घनखर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर श्री गंगानगर माए पारो 48

0: डिग्री सेल्सियस ने पार की नो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टाना विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामलानी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। RPSC RAS रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकाओं अर्जियां देवण रो काम 4 जून नु शुरू भेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थयो। नमस्कार।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 meter अर्थात 1413 kHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: गांव गांव और गलियां गलियां में घूम रहा गोपाल। सुन लो बण भाया, आगी जी चौपाल। अजी घर में छालर बच गया जी और आंगन में त्रपाल। ए रे भाया बढ़ाओ ना आवाज रेडिया की, आग्यो छ कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम को आनंद ले वाला संदा बण भाया कानश्यामा बना के अड़ीसू घणी घणी राम राम। बण भाया उधाड़ो घणो जोरा को पड़ रो छे, अशा में आपन अपना स्वास्थ्य को तो ध्यान रखाना। तावड़ा में नखड़ा पानी भी पीता रेवा, ठंडी चीजा फल फूल काम में लेवा। अब आपन मनक तो यहाँ को ध्यान रखान भी लिया, बोल सकाचा बतला सकाचा, पर आपना जानवर अजीब तो अबोला जानवर छे, तो आपन वहां को भी ध्यान रखाना। और जब बात जानवरा के आओ तो आपन आपना जानवरा का ताई तो ठंडाई को खावा पीवा को ध्यान रखाना चा, पर आपना गली कूचा में फरता जानवरा को भी ध्यान रखाना। वहां का पानी की व्यवस्था करा, खावा पीवा की भी व्यवस्था करा, छायादार ठाम जो वहां का लेकर बना सका तो और भी आचो। बण भाया आज 27 महीना अपन मना रहा था भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। ई दन ना अपन स्मृति दिवस भी खा छा। यलो जी भाई दन तो आज को बुधवार भी छे और आज बुधवार का दिन अपन लेकर आऊ छा सजीव फोन इन चौपाल। बिल्कुल आज चौपाल में विषय छे ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ फसलों की तैयारी। डॉक्टर गोपाल लाल मीणा जी जो की वरिष्ठ वैज्ञानिक ICARIISWC अनुसंधान केंद्र कोटा में कार्यरत छ, अपने साथ चौपाल में मौजूद रहेगा। बण मैं आपको तई बता दें कि विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करबो चाहो छो तो जरूर करो। फोन नंबर नोट करो 0744-294-1142। एक बात और का जब आप प्रश्न करो तो या तो रेडिया से दूर चल जाओ या फिर रेडिया ने थोड़ी देर के लिए बंद कर दो और आवाज थोड़ी आपकी ऊंची रखान जो ताकि आपको प्रश्न अपना विशेषज्ञ सुन सका। तो डॉक्टर गोपाल लाल मीणा जी आप वरिष्ठ वैज्ञानिक छो अनुसंधान केंद्र डडवाड़ा कोटा में, लियो स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
1: राम राम जी, बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब जब बात मृदा स्वास्थ्य की आओ छे तो भाई अपनी स्वास्थ्य तो मन समझ में आओ जे मन क्या को स्वास्थ्य, यो मृदा को स्वास्थ्य कहीं छे?
1: मृदा स्वास्थ्य के का मतलब जैसे स्वास्थ्य किसका होता है, जो जीवित होता है उसका स्वास्थ्य होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मानना पड़ेगा कि मिट्टी भी जीवित है। जीवित है जब तो उसको स्वास्थ्य है भाई। किसी जैसे आदमी अगर मर जाए तो उसका स्वास्थ्य रहता है क्या? नहीं रहता कोई स्वास्थ्य, जीवित व्यक्ति का ही स्वास्थ्य होता है। ऐसे ही मिट्टी भी एक जीवित संसाधन है और जीवित संसाधन होने का मतलब है कि उसमें जीव पल रहा है और असंख्य जो सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब मिट्टी में पल रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य का वो पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि मृदा की उर्वरक क्षमता कितनी है वो एक, दूसरा उसके गुणधर्म कैसे रहे हैं, तीसरा उसके जो जैविक के कार्बन की मात्रा है वो उसमें कितनी है, मृदा की पोषण धारण क्षमता और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता, नमी को धारण करने की क्षमता, इनको पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता, ये सभी मृदा के स्वास्थ्य के घटक हैं। तो हमें मृदा स्वास्थ्य का मतलब किसी एक चीज से खाली उर्वरकता नहीं देखना, उसकी उर्वरकता के साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, उसकी जल धारण क्षमता कितनी है, उसके जो रासायनिक जैविक घटक हैं वो कैसे हैं, पोषण प्रदान करने की क्षमता कितनी है, पोषण को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, वायु संचार कैसा है, जल धारण क्षमता

0: रहता है, ये सब चीजें उसके घटक आते हैं।
1: तो या तो आपने की कि मृदा को स्वास्थ्य, क्योंकि मृदा जीवित है तो स्वास्थ्य है। अच्छा, बात जब मृदा की करा तो स्वस्थ मिट्टी और अस्वस्थ मिट्टी दो तरह की होगी, है तो या दोनिया को अपना उत्पादन पर कहीं प्रभाव पड़ेगा?
0: नहीं देखो, ऐसा है, स्वस्थ अगर मिट्टी होगी तो आपका खेत भी स्वस्थ होगा, समृद्ध मिट्टी होगी
1: बिल्कुल,
0: और अगर स्वस्थ मिट्टी होगी तो उसमें पैदावार भी स्वस्थ होगी। अगर पैदावार स्वस्थ होगी तो खाने वाले भी स्वस्थ होंगे। अब आप दूसरी मिट्टी की बात करें, अस्वस्थ मिट्टी की, मतलब बीमार मिट्टी, बीमार मिट्टी में खाना पैदा कैसा होगा?
1: बीमार,
0: और बीमार को खा के हम क्या होंगे?
1: बीमार होगा बिल्कुल,
0: बीमार हो। तो ये मतलब मोटा मोटा है। दूसरा, अगर हम वैज्ञानिक के अनुसार, परिभाषा के अनुसार कहें तो मिट्टी की जो उत्पादन को सपोर्ट करने की जो क्षमता होती है, पोषण को जो प्रदान करने की क्षमता होती है, जीवन को जो पालने की क्षमता होती है, वो अगर उचित है जिससे कि हम स्वस्थ फसल उत्पादन कर सकते हैं, तो वो मिट्टी स्वस्थ मिट्टी कहलाती है। और जिसमें कि या तो पोषक तत्व होते हुए भी में फसलों को नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी पोषक तत्व की कमी है, या फिर उसके कोई से भी रासायनिक, जैविक या भौतिक गुणधर्म ऐसे हैं जो कि फसल उत्पादन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसी अगर कोई मिट्टी, या फिर उसमें कोई स्पेशल प्रॉब्लम है जैसे कि क्षारीयता, लवणता, या फिर जल भराव की उस तरह की मिट्टी, तो अगर जो जिससे कि स्वस्थ फसल उत्पादन नहीं कर सकते इस मिट्टी, वो अस्वस्थ मिट्टी है, या फिर मिट्टी में उसमें कुछ न कुछ कमी होती है। ठीक है,
1: अच्छा, बात मिट्टी का जब आप स्वास्थ्य की कर रहे हो तो अपन कशा पतो चालोगो का अपना खेत की मिट्टी स्वस्थ भी छ अस्वस्थ छ, या कशा पतो चालोगो?
0: देखो सीधी बात है, हमें अगर हमारा बॉडी चेकअप कराना है और हमें ये जानना है कि हम स्वस्थ है कि नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा?
1: परीक्षण करवानी पड़ेगा
0: बस। तो सिंपल ये है कि आपको भी मिट्टी का परीक्षण करवाना पड़ेगा। अब मिट्टी के परीक्षण करवाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसका सैंपल लेने में जो लोग है वो कि सैंपल देखा ना आपने, कई बार के हॉस्पिटल में सैंपल लेते हैं खून का, वो कह देते हैं वो तो सैंपल खराब हो गया, फेंक दे, दोबारा सैंपल देना पड़ेगा। इसी तरह से मिट्टी का सैंपल में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके खेत का वो जो परीक्षण की जो रिपोर्ट आएगी वो हो सकता है सही नहीं आए, या फिर उचित प्रॉपर नहीं आए। उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजें कि कहाँ से मिट्टी लेनी है, कहाँ से मिट्टी नहीं लेनी। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर मान लो किसानों को अपने फसल के उत्पादन के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना है, तो सबसे पहले तो ये जो खरीफ से पहले का टाइम होता है ना, और जो ग्रीष्मकालीन जिसको बोलते हैं हमें, जो अप्रैल से और जून के महीने का जो टाइम है, जहाँ रबी फसल की कटाई होती है, वो उपयुक्त समय होता है। फिर आपको लगभग 20 सेंटीमीटर तक की गहराई का बी आकार का या फिर उल्टे कीप आकार का गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे के मतलब दोनों किनारों से दो दो सेंटीमीटर की परत नीचे तक उतारेंगे और उस मिट्टी को अब इकट्ठा करेंगे। जब इकट्ठा करें, अब ऐसा कहां से करेंगे?
1: एक फोन ले लो डॉक्टर।
0: हाँ जी,
1: राम राम।
2: हेलो,
1: राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे चो?
2: राम राम रे नमड़ा।
1: बिल्कुल, काय नाम छे?
2: मेरा नाम मोहन लाल मीणा से।
1: कशा गाँव से बोल रहे चो?
2: सामरबाजू।
1: बिल्कुल, प्रश्न करो।
2: करे तू भाई मिट्टी की जांच करावा, मिट्टी कतरा गुंडा रुखाडा?
0: मैं बता रहा हूँ, आप एक बार सुनिए, मैं वही बात बता रहे थे अभी। जैसा अगर आपको जैसे मतलब मिट्टी की जांच करानी है, तो पहली सावधानी तो ऐसा ये ध्यान रखेंगे आप मिट्टी कहाँ कहाँ से नहीं उठाएंगे। जैसे कि आप पेड़ के नीचे से नहीं लेंगे, मेड़ के 2 मीटर की दूरी तक आप नहीं लेंगे, मेड़ के 2 मीटर दूरी छोड़ेंगे, तो मतलब पेड़ के नीचे से, मेड़ के पास से, जहां जमीन ऊंची हो वहां से नहीं लेना, जहां जमीन नीची हो वहां से नहीं लेना, जहां आपने कहीं पर रेड़ी या जैसे गोबर खाद इकट्ठा करके डाला हो उस जगह से नहीं लेना। इन चीजों को तो हटाना है पहली बात, ठीक है। फिर दूसरी जगह से आपको मतलब 8-10 जगह से पूरे खेत को अपन जेड आकृति में बांट ले, या फिर उसको 4 हिस्सों में बांट ले, तो 8-10 जगह से आपको मिट्टी के सैंपल लेने। सैंपल लेने के लिए जैसे उल्टा कीप होता है ना अपना, उल्टा कीप है, उस तरह का एक गड्ढा खोदेंगे बी शेप का, और 20 सेंटीमीटर लगभग 20 सेंटीमीटर की गहराई तक लेंगे, तो ऊपर से दोनों किनारों से मिट्टी उतारेंगे। अब उसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है,
2: आधा फिट
0: नहीं, 20 सेंटीमीटर बोला मैंने आपको, आधा फिट मान लो आप, उतना मान लो।
2: अच्छा अच्छा
0: ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मिट्टी ऊपर ऊपर से भर ली या फिर नीचे नीचे की मिट्टी कटी, ऐसा नहीं करना। जो अपन ने

0: गड्ढा खोदा है ना, उसके ऊपर से नीचे तक परत उतारनी है, ठीक है।
1: अच्छा,
0: और नीचे ऐसे ही दोनों किनारों से उतारेंगे तो वो एक गड्ढे में से आपकी ये मान लो कि लगभग 1 किलो के करीब मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे ही 8-10 जगह से अपन मिट्टी लेंगे, उस अब 8-10 जगह से लेंगे तो 8-10 किलो मिट्टी हो गई। इतना सैंपल चाहिए नहीं होता है जनरली जांच के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उस पूरी मिट्टी को इकट्ठा करो एक जगह, किसी तिरपाल पे, कट्टे पे, पट्टी पे। हाँ जी,
1: उसको
0: 60 रुपए एक किलो ले लेना। नहीं नहीं, छानना नहीं है ये, मैं ये आप सुनो एक बार, प्रॉपर चीज मैं बता रहा हूँ। ऐसे छानना नहीं है, इकट्ठा कर लिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, फिर उसको चार भागों में बांट लो। आमने आप चार भागों में बांट दो तो कोई से भी आमने सामने के, चाहे दाएं से बाएं या उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण उत्तर का, ऐसे कोई सा भी दो भाग आप उसमें से हटा दो, बाकी बचे दो उनको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लो, फिर चार भाग कर लो, फिर उनमें से दो हटा दो। ऐसे करते करते जब आपके आधा किलो से पौन किलो मिट्टी रह जाए ना, वो है आपका सैंपल, वो पूरे खेत को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक जगह से मिट्टी भर लाए, ऐसा नहीं। जब उसको करके फिर अच्छी तरह से पन्नी में पैक करो उसको, और फिर आपको 3 पर्चियां बनानी है जिसमें आप पर्ची में सारी डिटेल लिखेंगे कि जैसे कि आपने खेत का खसरा नंबर कौन सा है, किसान का नाम क्या है, किसान के नंबर क्या है, अभी कौन सी फसल ली थी आपने, आगे कौन सी फसल लोगे आप खरीफ सीजन में, ये सारी चीजें लिख के एक उसके अंदर
1: डाल। धान की फसल होगी, धान की
0: मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो ठीक है होगी, लेकिन अब मिट्टी के परीक्षण के लिए फिर वो ये पर्ची बना के आप उसमें एक अंदर डालो, एक ऊपर चिपका दो, एक खुद के पास में रख लो। आप जैसे आपने कहा ना धान की फसल होगी, तो ऐसे अगर आप फसल का नाम नहीं लिखोगे तो क्या है कि जांच करता क्या करेगा, 15-20 दिन में आपको जांच देगा, फिर वो क्या करेगा कि वो कृषि केंद्र में, कृषि केबीके में हो जाती है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है हर जिले में, वहां पर हो जाती
1: है। कृषि केंद्र से सोगरे की बावड़ी,
0: सोगरे की बावड़ी नहीं, लंका गेट पे आपके वहां पर वो
1: ना सर, यहाँ लंका गेट में भी सर।
0: हाँ, सोगरे की बावड़ी पे कृषि विज्ञान केंद्र है वो, लंका वहाँ पे मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। मैं कोटा से बोल रहा हूँ एक्चुअली, बूंदी में कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ करवा सकते हैं, केबीके पे करवा सकते हैं, नहीं तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ICR का संस्थान हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जैसे कोटा में हमारा है, वहाँ पर आप करा सकते हैं, जाँच करा सकते हैं उसकी।
2: बिल्कुल, प्रश्न को जवाब मिल गयो ना,
1: मिल गयो है ना, बना मिल गयो।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो मिट्टी परीक्षण की बात कर रहे थे, आपने कुछ सावधानियां बताई, का एक तो पेड़ का नीचे से न लेनी, और 2-3 बात बताई, और
0: भी मेड़ कोई मेड़ के पास से नहीं लेना, क्योंकि मेड़ के पास से क्या होता है जनरली पानी बह के आता है, मिट्टी बह के भी आती है, और ढलान तो वो क्या कि जो एक एक्चुअल पिक्चर आनी चाहिए ना वो नहीं लेना, वो खेत की वो पिक्चर सामने नहीं आती।
2: अच्छा,
0: तो ऐसी चीजें जो मतलब उर्वरकता को या मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करे ऐसी चीजें, उन चीजों को हमको मतलब सावधानी पूर्वक अवॉइड करना है, उनको वहां से नहीं लेना। एक कहीं पानी भरता हो,
2: अच्छा,
0: वहां नहीं लेना, या फिर कहीं ऊंचा हो खेत,
2: जहाँ पानी न पूक,
0: पानी पूकता ही नहीं हो, या फिर बहके चला जाता हो, वैसे आपको उन जगहों को ध्यान रखना। या फिर किसी ने जैसे खाद डाला है, खेत ने रेड डाली, तो वहाँ की तो उर्वरकता वैसे बढ़ी जाएगी ना, तो फिर वो आपकी खेती पिक्चर नहीं आएगी,
2: जो वास्तविक स्थिति जो उसको पता ना लगा,
0: उसको पता नहीं चलेगा।
2: अच्छा, आपने मिट्टी परीक्षण की बात करी, हर साल मिट्टी परीक्षण करावो जरूरी जगह,
0: अगर कराए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 3 साल में एक बार जरूर करा लें इस चीज को, नहीं तो क्योंकि ये 2 से 3 साल का जो चक्र है ना, वो जनरली अपने जैसे पुराने अनुभव के आधार पर भी देखेंगे तो कहेंगे जैसे गोबर की खाद भी डालते थे ना किसान, तो हर 2-3 साल में खेत का नंबर लेते थे, तो वो एक चक्र है। और एक दूसरा जैविक पदार्थ का जो साइकिल होता है डिकम्पोजिशन का, वो भी लगभग पूरा हो लेता, तो 3 साल नहीं तो हर साल कराए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में 5 रुपए में टेस्ट हो जाता है,
2: अच्छा,
0: बाकी तो केबीके में थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, बस ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है।
2: बिल्कुल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे थे कि भाई आपन ना 2-3 साल में तो करवाई लेनी चाहिए। अच्छा, जैविक खाद की आपन बहुत बात सुना चा, जैविक खाद से अपनी मिट्टी जो है वो बड़ी उन पोषक तत्व तो मिल जाओ जे, तो जरूरी जगह जैविक खाद।
4: देखो ऐसा है कि आजकल किसान क्या कह रहे हैं कि हम रासायनिक खेती को सरकार भी मना कर रही है, और किसान जब रासायनिक खेती की बात करते हैं तो खाद देते हैं तो वो कौन सा खाद देते हैं, या तो यूरिया देते हैं, DAP देते हैं। यूरिया में बोले तो नाइट्रोजन,
3: बिल्कुल,
4: और DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास तो बहुत कम देते हैं, कोई कोई सल्फर या जिंक देता है। अब पोषक तत्व तो पौधे को 17 चाहिए,
3: बिल्कुल,
4: हम तो दे तो 2-3 ही रहे, तो बाकी पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होगी उनके लिए, या तो आप कोई संसाधन देंगे। जैविक तत्व जो खाद है वो एक ऐसा खाद है जिसमें पहली बात तो सारे पोषक तत्व होते हैं, पहली चीज तो। पोषक तत्वों के अलावा अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने कहा कि जमीन में मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव अगर कोई जीव है तो उसको खाना पीना भी चाहिए, अगर खाना पीना चाहिए क्योंकि उनका जीवन चल रहा है,
3: बिल्कुल
4: जीवन चल रहा है, तो उसके लिए खाना पीना क्या होता है उनका, उनका खाना पीना ही जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ ही उनका खाना पीना। अब वो क्यों चाहिए हमें, भाई हम कोई पूछ भी सकते हैं किसान, भाई हम क्यों पालें लाखों करोड़ों जीवों को, क्या जरूरत है। तो उसके लिए क्या कि जैसे अब हम जो भी उर्वरक खाद वगैरह जो डालते हैं ना, वो पौधे को उस अवस्था में डायरेक्ट चाहिए नहीं होते, पौधे को वो दूसरी अवस्था होती है जिसमें कि उन पोषक तत्वों को तोड़ के बदल दूसरे उपलब्ध अवस्था में कौन बदलेगा, वो सूक्ष्म जीव बदलेगा।
3: बिल्कुल,
4: अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो आप कोई सा भी खाद दे लो, कितना भी खाद दे लो, वो कोई काम नहीं करेगा। तो उस उन चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें जैविक पदार्थ से ही पहली बात तो
3: एक फोन ले लें। हाँ जी, राम राम। राम
5: राम। राम
3: राम। रेडियो की आवाज ना कम करो। हाँ आप बताओ, कहाँ से बोल रहे हो?
5: जितेंद्र बोल रहे, बाजड़ से।
3: बाजड़ से काई प्रश्न छे
5: सर? से ये पूछ रहे थे, ये देसी खाद बहुत महंगो दे रहे थे साहब।
3: हाँ तो खरीद ना पा रहे अपन यूं?
5: हाँ मतलब बेहतर रेट कैसे हो ये बार डॉक्टर साहब?
4: देखो रेट होना अलग चीज है, लेकिन अभी एक देखो भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है MGMG, मेरा गांव मेरा गौरव, उसकी जो मेन थीम क्या है, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। ठीक है, तो आप खाद की तरफ जाने से बढ़िया है, जो अपने जो फर्टिलाइजर है उनकी तरफ जाने से बढ़िया है, अपने पास जो संसाधन है उनको उपयोग करें, उसमें भी जैविक जो खाद है, जैविक खाद की जैसे बात भी चल रही थी, जैसे गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, या फिर अपने जैसे हरी खाद हो गई, या फिर जैसे धान की कोई फसल ले रहा है तो उसमें अजोला ले सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ले सकता है, तो ये आपके जो फसल है उनके लिए पोषक तत्वों की प्रबंधन तो होगा ही होगा, साथ में जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा, दूसरा आपको जो जो केमिकल फर्टिलाइजर है उन पर निर्भरता भी आपकी कम होगी। तो रेट कम होना ज्यादा होना एक अलग बात है, आपको अभी सम मतलब इंटीग्रेटेड पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना है वो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा महंगा हो गया, आप कह रहे हैं मैं खरीद नहीं पा रहे, लेकिन फसल को तो पोषक तत्व तो चाहिए, अब फसल को पोषक तत्व तो कैसे देंगे, वो ज्यादा विचारणीय विषय है आज की तारीख में।
3: साची बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसा गेहूं कटिया, गेहूं के बाद में आपने नोड़ाया बच गई, तो आपना ज्यादातर बन भाई तो हम आग लगाना खत्म कर दे, पर फसल अवशेष प्रबंधन के तहत अपना वैज्ञानिक भी या बार बार खर्च कि भाई जो अवशेष बच रहा है वो मिट्टी के लेकर घना आवश्यक
4: नहीं। देखो आपने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले बोला था कि जैविक खाद, अब मान लो गोबर की खाद किसी के पास नहीं है, पर कंपोस्ट भी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, है ना, हरी खाद भी आपने नहीं हुए, तो अब एक कम से कम फसल अवशेष तो बचा, उसको तो मिला दो मिट्टी में, क्योंकि हमें जैविक खाद मिलाना ही है, अगर जैविक पदार्थ नहीं होगा तो मिट्टी पथरीली हो जाएगी, कंकरीली हो जाएगी, जो मिट्टी धीरे धीरे सख्त होती जा रही है ना, इस चीज को हमें

0: अगर इस चीज का समाधान करना है तो हमें जैविक पदार्थ चाहिए चाहिए। जैविक पदार्थ बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली मिट्टी के नरम बनाने के लिए चाहिए। अब उसको जलाना एक तरह से, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है।
1: बिल्कुल
0: सरकार को इसकी, सरकार चाहती भी है कि ऐसा नहीं हो, पाबंदी भी है कई जगह पे, सख्त नियम भी होने चाहिए। उससे बढ़िया ये है ना कि आप उसमें भाई बीघा का 5-7 किलो अगर यूरिया फेंक के फसल करते तुरंत थोड़ी सी नमी रहती, उस टाइम भी अगर एमवी प्लो से आप पलट दो तो आपका जैविक खाद भी मिल गया उसमें और पोषक तत्वों की भी
1: बिल्कुल
0: उसमें पूर्ति हो गई, तो और जो आपकी समस्या थी वो भी खत्म। और आपने जैसे गहरी जुताई के तहत पलटा है तो जो नीचे जो हानिकारक कीट मकोड़े या रोगों के जो अंडे अंडे वगैरह बच्चे थे वो भी मर
1: वो भी
0: जाएंगे,
1: मर जाओ।
0: और दूसरे खरपतवार वगैरह के बीज है वो भी तपके मर जाएंगे। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, इससे नुकसान नहीं, लेकिन उसका प्रबंधन का यही है कि आपको जलाना कोई प्रबंधन नहीं, जलाना एक तरह से नुकसान है, वो आपके मित्र कीट भी मर जाएंगे उसमें।
1: बिल्कुल
0: कुछ पोषक तत्व हैं जो बाष्पीकृत होकर उड़ जाएंगे, उनमें से एक नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ये सारी चीजें उड़ जाएंगी तो उनकी कमी वैसे आ जाएगी जमीन में, तो आपकी फसल के लिए तो नुकसान ही नुकसान है ना उसमें कोई। दूसरी बात, आपके पास में टाइम पूरा है।
1: हाँ
0: ये भी तो नहीं है कि आपको नई फसल अब ये मतलब अगली फसल तुरंत बोने, जैसे खरीफ के बाद में रबी बोना होता है तो मान लेते हैं कि भाई किसान के पास में कम, अभी अप्रैल से जून जून क्या तक
1: लगभग 2 महीना का वक्त,
0: अप्रैल मई जून 3 महीना तो कम से कम पड़े हैं आपके पास में, 3 महीने 2.5 महीने तो कम से कम, पर इतने में तो वो सड़ गल के खाद बन जाएगी।
1: बिल्कुल
0: खाद बन जाएगी तो उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी,
1: अपना आर्थिक जो जो भी लाभ हो
0: उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो आपको कम खाद खरीदना, जैसे अभी किसान भाई कह रहे थे कि महंगा हो गया तो आपको खरीदना ही कम पड़ेगा, आपकी जेब पे खर्चा कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम बढ़ेगी
1: और जमीन भी बढ़िया होगी,
0: क्योंकि जो इनकम बढ़ाने का मतलब खाली ज्यादा कमाना नहीं, बचत करना भी एक इनकम बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बचत करके भी तो इनकम बढ़ाई जा सकती
1: बिल्कुल। है बिल्कुल आपको बता दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे छे ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ फसलों की तैयारी विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करबो चाहो तो 2941142 डायल करके हाल भी प्रश्न पूछ सको छो। अच्छा गहरी जुताई की जब आप बात करना चाहते हो, अबार गर्मी को समय है अबार तो आप काई फसला भी कोई ना और ये बिल्कुल खाली खेत पड़ा है तो अबार ये गहरी जुताई की जो बात चाल है बार बार तो गहरी जुताई से काई काई लाभ चगा अपना
0: लाभ उसको मैं बताया ना, जैसे पहला लाभ तो ये बताया आपको जैसे हानिकारक कीट है रोग है
1: उनके।
0: हाँ जी
1: राम राम
2: राम राम राम
1: राम राम, कहाँ से बोल रहा चो?
2: मैं कलुंगा से बोल रहा साहब।
1: नाम बताओ।
2: द्वारिका लाल।
1: बिल्कुल प्रश्न करो साहब।
2: प्रश्न ये साहब गड़ा में ये भी कथनों में लाए जाओगे हो रहा तो
0: गर्डा का डीएपी, आप डीएपी से ज्यादा जो बात कर रहे हैं ना, जैसे डीएपी की तो आप ठीक है डीएपी आप मिला रहे हैं, लेकिन हम आज बात हम करना चाह रहे थे कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन।
1: हाँ, बिल्कुल
0: उस पे अगर आप बात करें, मैं डीएपी भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी जैसे सरकार ने भी, जैसे मोदी जी ने भी तो पिछले दिन अपील की थी ना कि हमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पे जाना है, तो उस चीजों को ध्यान में रखना है आपको। मैं बाकी डीएपी की मात्रा आप जैसे अगर कहेंगे आप कितना डालते हैं अभी?
2: 10 किलो बीघा का।
0: 10 किलो बीघा का डालते हैं ना, तो आप मतलब लगभग लगभग 1.5 कट्टा 1 हेक्टर में डालते हैं, ठीक है? 1.5 कट्टा 1 हेक्टर का मतलब 6 बीघा के करीब आप डालते हैं, है ना? 6 बीघा के करीब में आप 1.5 कट्टा डालते हैं, तो इतना भी जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो हमें उसको जो डाल रहे हैं ना फास्फोरस, जैसे अभी जैविक खादों की बात चली तो उसमें एक और होता है अपन जैविक कल्चर, उसमें एक होता है पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, अगर वो हम बीज के बीज उपचार के साथ में डालें, उसको बीज उपचार के रूप में दें, तो होगा क्या, जो फास्फोरस आपकी मिट्टी में पड़ा है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या फिर वो पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको वो सोल्यूबलाइज करके पौधे को पहुंचा देगा, जिससे आपकी ये जो आवश्यकता है ना ये कम हो जाएगी आपकी।
2: अच्छा।
0: तो आप उस तर...
2: आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे डीएपी को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
0: उठाने के लिए मतलब
1: हटाने के लिए हटा बगो, मतलब अगर डीएपी न डालो चाहे तो
0: डीएपी नहीं डालना चाहे तो आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट का नाम सुना है आपने?
2: आई?
0: सिंगल सुपर फास्फेट SSP रकोंडा जिसको बोलते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे यूरिया की कमी पड़ती है और नाइट्रोजन आपको देना है तो अमोनियम नाइट्रेट दे सकते हैं, वो ज्यादा कार

0: करें गरला में बजाय आप सिंपल यूरिया के, तो इन दोनों का यूज करके आप दे सकते हैं, तो रखोंडा आप यूज कर सकते हैं उसके लिए।
1: जैसे एक उदाहरण देता था, तो जैसे आप सुपर मोड देंगे तो पीले पीले रहते हैं पौधे, उसको उसको मिटाने के लिए क्या समाधान?
0: हाँ जी,
1: जैसे अपन ने सुपर मोड़ा,
0: हाँ,
1: वो जिसे अपन का धान उगता है तो पीले पीले रह जाते हैं, उसके उपाय क्या है?
0: नहीं, उसमें ऐसा है, वो पीले क्यों रह रहे हैं उसका कोई कारण, या तो मान लो नाइट्रोजन की मान लो कमी है तो पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, या फिर कोई बीमारी है तो वो देखो देख के ही बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्ट हम कह दें उसको।
2: बिल्कुल, जहाँ तक वैज्ञानिक देखेगा कौन है वहाँ तक
0: वो, क्योंकि जांचेंगे पर कहेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे उसको।
2: बिल्कुल, आपन गहरी जुताई की जब बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि का फायदा आपन लेगा।
0: पहला फायदा मैंने बताया आपको, जैसे कि भाई हानिकारक कीट पतंगे, दूसरा आकर आपके फसल अवशेष वो मिट्टी में दब जाते हैं अच्छी तरह से जल जाते, फिर एक वायु संचार अच्छा होता है उसका, क्योंकि पौधा भी जिंदा है, नीचे भी जीव है, मैं जैसे बताया, तो अगर जीव है हम जैसे हम जीव है तो हमें भी श्वास लेना है।
2: बिल्कुल। राम राम।
3: राम राम जी।
2: नाम बताओ
3: जी। मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ बूंदी से।
2: बिल्कुल अर्जुन जी, का प्रश्न है
3: जी? मुझे कुछ बताओ तो, यहाँ जैसे पिछली बार को हमारा आधो कट्टो सुपर वालो रह रहे थे, तो ना अपने गड्ढा की फसल में काम ले सका, चांदर ले सका, खुल रही हो जी?
0: नहीं, अगर उसके ढेले तो नहीं बने ना?
3: नहीं।
0: हाँ तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। हाँ। ये को मतलब क्या कि जो सुपरमैन जो पोषक तत्व होता है अपना, जैसे फास्फोरस मेन होता है, वैसे तो कैल्शियम भी होता है, थोड़ा सल्फर भी होता है, लेकिन ये क्या है, ऐसे होते हैं जो उड़ते नहीं है हवा से। अब जैसे यूरिया है, यूरिया अगर पिघल जाता है, ढेले बन जाते हैं, वो खराब होने की संभावना रहती है। डीएपी सुपरमैन ऐसे नहीं, तो आप कम ले सकते हैं उसको।
3: ठीक है सर,
2: बिल्कुल
3: धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अब आपने जो गहरी जुताई की बात करी,
0: तो उसमें जैसे मैं बता रहा था वायु संचार, क्योंकि वायु संचार क्यों, और वायु संचार साथ साथ में तापमान का भी संचार, क्योंकि दोनों चीजें, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव भी है और फसल भी जीवित है, क्योंकि वो भी जीवित प्राणी, तो उसको भी सांस लेना है। अगर वायु का संचार ही नहीं होगा, मान लो नीचे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का चैम्बर बन जाएगा, तो जीव मर जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, तो वायु संचार। फिर जैसे ही बरसात आ गई तो नमी संरक्षण, क्योंकि जैसे बरसात का पूरा पानी खेत में समा जाएगा तो नमी संरक्षण भी हो जाएगा, जल संरक्षण जिसको बोलते हैं। दूसरा, आपका मिट्टी का कटाव भी कम होगा।
2: राम राम साहब। हेलो।
4: हेलो।
2: राम राम साहब, बेगा साहब प्रश्न पूछो। बेगा साहब पूछ लो प्रश्न।
4: हाँ राम राम साहब।
2: बिल्कुल
4: साहब, माँ कहते ना जो मतलब अपन जो ले चाहे जो मिट्टी की जांच कराओ चाहे, उसमें जो फायदा चाहे वो फायदा कहीं कहीं रहेगा डॉक्टर साहब?
0: फायदा देखो मेन, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये रह रहा था अभी। इसका फायदा, सबसे बड़ी फायदा ये है कि आपकी जांच के अनुसार आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे, उससे क्या होगा, ना तो फसल को कम पड़ेगा, ना आप जो ज्यादा डाल रहे थे अंदाजे से डाल रहे थे तो ज्यादा नहीं जाएगा, अब आप जितनी जरूरत है उतना उपयोग करेंगे तो संपूर्ण उपयोगिता होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी, वातावरण खराब नहीं होगा, पैसा बचेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी, ये सारे फायदे होंगे अगर आप जांच के हिसाब से करेंगे। अगर वैसे अंदाजे से करेंगे तो उसमें कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है उस हिसाब से।
2: अच्छा बात आपने डॉक्टर साहब मिट्टी परीक्षण की कर ली, आपने गहरी जुताई की कर ली, तो खरीफ फसल की तैयारी में यहाँ के अलावा आप और कई तैयारी करा?
0: अब जैसे खेत हमारा खरीफ के लिए फसल तैयार हो गया, अब आती है खरीफ फसल की बात, तो फसल की तैयारी की सबसे मेन शुरुआत होती है, सबसे पहले तो आपको अच्छा बीज लेना है, प्रमाणित बीज होना चाहिए, दूसरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: फिर उसमें कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए, जैसे कि वो या तो सूखा सहन करने की क्षमता वाला होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, ये फिर बीज के बाद अच्छी वैरायटी उसकी जो आपके एरिया में आपके मिट्टी को आपके वातावरण को सूटेबल करती हो, उस तरह की वैरायटी आप सेलेक्ट करें जो आप फसल चक्र को भी सूट करती हो। इसके अलावा फिर आप अब जो बीज है उसका या तो उपचारित बीज लें, नहीं तो उपचार करें, बीज उपचार बोने से पहले उसका बीज का उपचार। बीज उपचार में मतलब एक सीधा सा फॉर्मूला है, शब्द ऐसा है जो मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन FIR का नाम सुना है?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो शब्द FIR का मतलब जैसे फंजीसाइड से पहले ट्रीट करें, और फिर उसके बाद में इंसेक्टिसाइड अगर कोई हम दे रहे ट्रीटमेंट तो वो से करें, फिर जो भी कल्चर दे रहे हैं हम, कल्चर मतलब नाइट्रोजन के लिए, तो जैसे अगर हम दलहनी फसलों में तो राइजोबियम कोई सा हो सकता है, धान्य फसलों में जैसे एजेक्टोवेक्टर है, एजोस्पाइरुलिना है, या फिर फास्फोरस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो जो पीएसबी फास्फोरस सोल्वलाइजिंग बैक्टीरिया है।

0: सब चीजों का बीजोपचार करें, फिर बरसात आने के बाद में टाइम पे सोइन करें उसके।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर गोपाल लाल मीणा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ICAR अनुसंधान केंद्र कोटा, आप स्टूडियो में पधार्या और बणवाया का सवाल का जवाब दियो, इकेले का आपको घणो घणो धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, राम राम।
1: लो बणवाया कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहे हो, आपसे खाल फिर मिलंगा चौपाल में, चालाचा राम राम।

चौपाल। अभी किसान भाई अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 7:33 हो चुके हैं और अब श्रोता सुनेंगे माटी के सुरों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं और समय है श्रोताओं के अपने पसंदीदा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत में आज पहला नगमा फिल्म लव आजकल से।

आतिफ असलम की आवाज में अभी आपने फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत सुना, जिसके बोल लिखे इरशाद कामिल ने और संगीत प्रीतम का। लीजिए अब अगला नगमा फिल्म खट्टा मीठा से।

फिल्म अनजाना अनजानी से अभी आपने ये गीत सुना, विशाल राविजानी और मोहित चौहान की आवाजों में। संगीत था विशाल शेखर का और बोल लिखे कुमार और विशाल ददलानी ने। लीजिए अब अगला नगमा फिल्म माय नेम इज खान से।

फिल्म मेहुना से अगला गीत सोनू निगम, आफताब साबरी, हाशिम साबरी की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं संगीत अनु मलिक का।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी कि 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा यह

0: प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान

0: आप जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट

पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 kHz पर। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज के कलाकार हैं, हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको कुछ धुन सुनाएंगे और आप खुद अंदाजा लगाइएगा उस गीतकार के नाम का जिन्होंने लिखे हैं इस तरह के कई सारे गीत।

जी हाँ बिल्कुल, आप पहचान गए होंगे, आज के कलाकार हैं गीतकार अनजान। गीतकार अनजान भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर। नमस्कार, मैं हूँ आज आपके साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका अपना रेडियो दोस्त अभिषेक तिवारी। आज हम बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि उन्होंने किन किन फिल्मों में गीत लिखे हैं और उनसे जुड़े हुए कई ऐसे पहलू, चाहे कवि सम्मेलन या मुशायरे की बात हो, फिल्मों में उनकी शुरुआत की बात हो, उनकी प्रमुख फिल्में, सफलता, इस सब के बारे में हम जानेंगे और साथ ही उन फिल्मों के जो गीत हैं वो भी आपको आज सुनवाएंगे। तो हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर, जिनका वास्तविक नाम लालजी पांडे था और उन्हें जो फिल्म लाइन कह लें या जो श्रोता कह लें, सुनने वाले या जो फिल्मों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, पूरा देश उन्हें जिस नाम से जानता है वो नाम है अनजान। तो अनजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबा पर चढ़े हुए हैं, चाहे खई के पान बनारस वाला की बात कर लें, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और रोते हुए आते हैं सब जैसे, न जाने कितने ही सदाबहार गीत अनजान ने लिखे और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके गीत काफी लोकप्रियता हासिल करते थे। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली थी। अनजान साहब के पुत्र समीर भी पिता के समान ही प्रसिद्ध गीतकार हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के करिश्माए व्यक्तित्व अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी बनारस में हुआ था। बचपन के दिनों से ही उन्हें शेरो शायरी के प्रति गहरा लगाव था। शेरो शायरी के अपने शौक को पूरा करने के लिए बनारस में आयोजित सभी कवि सम्मेलनों और मुशायरों में वो हिस्सा लिया करते थे। हालांकि मुशायरों में वो उर्दू का इस्तेमाल कम ही किया करते थे, जहां हिंदी फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल एक पैशन की तरह किया जाता था, वही अनजान अपने रचित गीतों में हिंदी पर ही अधिक जोर दिया करते थे।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और फिल्म संगीत में जो आज के हमारे कलाकार हैं वो है गीतकार अनजान। जी हाँ, गीतकार अनजान के विषय में हम बात भी कर रहे हैं। अगर उनके फिल्मी शुरुआत की हम बात करें तो एक गीतकार के रूप में अनजान ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1953 में अभिनेता प्रेमनाथ की फिल्म गोलकुंडा का कैदी से की थी। इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्होंने लहर ये डोले, कोयल बोले और शहीदों अमर है तुम्हारी कहानी गीत लिखे थे, लेकिन इस फिल्म के जरिए वो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए, पर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच उन्होंने कई छोटे बजट की फिल्में भी की जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अचानक ही उनकी मुलाकात जीएस कोहली से हुई, जिनके संगीत निर्देशन में उन्होंने फिल्म लंबे हाथ के लिए मत पूछ मेरा है मेरा कौन गीत लिखा। इस गीत के जरिए वो काफी हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। लगभग 10 वर्ष तक माया नगरी मुंबई

में संघर्ष करने के बाद वर्ष 1963 में पंडित रविशंकर के संगीत से सजी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित फिल्म गोदान में उनके रचित गीत चली आज गोरी पिया की नगरिया की सफलता के बाद अनजान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अनजान को इसके बाद कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए थे, जिनमें बहारें फिर भी आएंगी, बंधन, कब, क्यों और कहां, उमंग, रिवाज, एक नारी एक ब्रह्मचारी और हंगामा जैसी कई फिल्में इसमें शामिल थी। इसके बाद अनजान ने सफलता की नई बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत लिखे। अनजान के सिने करियर पर यदि नजर डाली जाए तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके रचित गीत काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। साल 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने के लुक छिप जाओ ना गीत की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन के लिए अनजान ने कई सफल गीत लिखे।

साल 1976 में आई दो अनजाने इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और किशोर कुमार ने इस गीत को आवाज दी थी। और ऐसे ही कई सारे ऐसे गीत हैं जो अनजान ने लिखे, और गीतकार अनजान ने जिन गीतों को लिखा अधिकतर गीत आपको वही मिलेंगे जिनका फिल्मांकन अमिताभ बच्चन के ऊपर हुआ। उसे आवाज दी किशोर कुमार ने और उस गीत को तैयार किया, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। बरसों पुराना ये याराना, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, रोते हुए आते हैं सब, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जैसे कई सदाबहार गीत हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर फिल्माए, लेकिन उन गीतों की जो रचना है वो रचना की गीतकार अनजान ने।

श्रोताओं, अगर प्रमुख फिल्मों की हम बात करें तो कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली थी। सबसे पहले कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का गीत वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म बंधन में पसंद किया गया। इसके बाद अनजान द्वारा रचित फिल्मी गीतों में कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत हुआ करता था। इन दोनों की जोड़ी ने जिन फिल्मों के लिए अपना योगदान दिया उसमें दो अनजाने, हेरा फेरी, खून पसीना, गंगा की सौगंध, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, याराना, ईमानदार, दाता, जादूगर और थानेदार जैसी फिल्में जो हैं वो प्रमुख हैं। लेकिन अभी हम आपको जिस फिल्म का गीत सुनाने जा रहे हैं, यकीनन आप जब आपने सुना होगा कि आज हम गीतकार अनजान के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, उनके रचे हुए गीतों को आपको सुनाने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने ये गीत तो अवश्य ही सोचा होगा।

फिल्म संगीत कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं और फिल्म संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं गीतकार अनजान की जो रचनाएं हैं उनके लिखे हुए जो गीत हैं वो आज हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको पता होगा कि गीतकार अनजान के जो सुपुत्र हैं समीर, जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में कई उन्होंने गीतों की रचनाएं की हैं, बहुत शानदार गीत भी उन्होंने लिखे हैं बहुत, और उनके गीतों को भी काफ़ी पसंद किया जाता है और 90 के दशक में तो एक दीवानगी थी उनकी जो रचनाएं थी, उनके लिखे हुए जो गीत थे उनकी भी। लेकिन एक हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक जो उनके पिता गीतकार अनजान का लिखा हुआ गीत था उसके संदर्भ में भी चर्चा की थी और बताया था कि जब डॉन फिल्म का रिकॉर्डिंग चल रही थी, जब डॉन फिल्म के गानों की, तो उस समय किशोर कुमार जो अपने अलहदा अंदाज के लिए जाने जाते थे, तो किशोर कुमार ने जब खई के पान बनारस वाला ये गीत जब गीतकार अनजान ने लिखा तो उन्होंने इस पर उस समय एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपत्ति भी व्यक्त की थी कि खई के शब्द क्या है, तुम इस शब्द को चेंज करो, इस शब्द को बदलो। लेकिन अनजान जो थे गीतकार, उन्होंने कहा कि दादा आप एक बार मेरे कहने पर ये गीत गाइए तो सही, एक बार मेरे कहने पर इसे गुनगुनाइए तो सही। और फिर वहां पर बकायदा उस गीत को गाने के लिए पान आया और पान खा करके उस गीत को गाया गया और कई सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो बकौल समीर, जो गीतकार समीर ने बताई हैं, उनका ये भी कहना था कि उस समय वो काफ़ी यंग थे और स्टूडियो में ही मौजूद थे। तो ये सारी जो बातें हैं ये खुद गीतकार समीर, जो गीतकार अनजान के सुपुत्र हैं, उन्होंने बताई है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी और फिर बाद में न सिर्फ वो गीत बल्कि उस फिल्म से संबंधित जितने भी गीत थे, यानी कि मैं डॉन की बात कर रहा हूँ जो साल 1977 में आई थी, डॉन के सभी गीत जो हैं वो काफ़ी सुपरहिट हुए थे। तो आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक और गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और आज के कलाकार हैं फिल्म संगीत में गीतकार अनजान। गीतकार अनजान के संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो आइए अब आपको उनके प्रसिद्ध गीतों से मुखातिब करवाते हैं। तो उनके प्रसिद्ध गीतों में आपके हंसी रुख पे बहारें फिर भी आएंगी जो फिल्म है उससे ये गीत है, डॉन फिल्म का खई के पान बनारस वाला जिसका जिक्र भी हमने किया था, मुकद्दर का सिकंदर का दिल तो है दिल।

रोते हुए आते हैं सब, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। शराबी फिल्म का मुझे नौलखा मंगा दे रे, खून पसीना फिल्म का, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, और बरसों पुराना ये याराना। ये गीत जो है उनके काफी पसंद किए जाते हैं। वर्ष 1989 में सुल्तान अहमद की फिल्म दाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का रचित गीत बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और आज के कलाकार हैं गीतकार अनजान, जिनके संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे हैं और उनकी रचनाओं से सजा संगीत भी आपको सुनवा रहे हैं। वर्ष 1989 में सुल्तान अहमद की फिल्म दाता का अभी आपने ये गीत सुना और ये जो गीत है ये आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। कल्याण जी आनंद जी के अलावा उनके पसंदीदा संगीतकारों में यानी कि अनजान के पसंदीदा संगीतकारों में बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नैयर, राजेश रोशन तथा आरडी बर्मन प्रमुख रहे। वहीं उनके गीतों को किशोर कुमार, आशा भोंसले, मोहम्मद रफी तथा लता मंगेशकर जैसे चोटी के गायक कलाकारों ने अपने स्वर से सजाया। अनजान ने अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सिने करियर में लगभग 200 फिल्मों के लिए गीत लिखे। लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा को उन्होंने अपने गीतों से सवारा। साल 1997 में उनका निधन हुआ था और उससे पहले उन्होंने कई ऐसे गीत लिखे और ये जो सफर है ये 90 के दशक में भी चला। 90 के दशक

में भी ऐसे कई सारे गीत हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं, और कुछ गीत तो ऐसे भी हैं जो अगर आप आज सुनते हैं तो वो गीत आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि ये गाना।

0: श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज के कलाकार थे गीतकार अनजान। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें न्यूज ऑन AIR के ऑफिशियल ऐप पर भी सुन रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: सुरीली धड़कन, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छाया की।

कभी कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, प्यारा सा, दिल की धड़कन सा। फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है जो हर जगह आपको घेरे रहता है। हम उसके लौटने की उम्मीद करते हैं पर वो नहीं लौटता। हम खुद को समझाते हैं, सोचते हैं, कहां, कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपने आंसू, अपना वक्त हम बर्बाद करते चले जाते हैं। अफसोस, हम ऐसे रिश्तों की कद्र करते हैं जो हमारे होते ही नहीं हैं। हाँ, ये सच है, वो रिश्ते हमारे होते ही नहीं हैं।

कुछ रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करो उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसने आपको कभी चुना ही नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में ऊर्जा लगाना व्यर्थ है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दर्शन का लाभ पर्वतारोही की अपेक्षा वो अधिक अच्छी तरह से ले सकता है जो किसी दूर समतल क्षेत्र में खड़े होकर उस सौंदर्य को निहारता है। बस ऐसे ही जिंदगी में नजदीकियों की अपेक्षा कभी कभी दूरियां भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि बहुत करीब से अक्सर हम सत्य को साफ साफ देख नहीं पाते। और जीवन जीवन तो अभिनय से नहीं, सच के साथ चलता है। हाँ, सच के साथ।

जिसे आपके जीवन से जाना है वो सबसे आरामदायक किनारे पर भी कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। ऐसे में किसी को जबरदस्ती रोकना, गिड़गिड़ाना, मिन्नते करना, रोना सब मूर्खता है। सच तो ये है कि स्वयं को कभी किसी ऐसी डोर से मत बांधो जिसकी पकड़ खुद तुम्हारे हाथ में नहीं हो।

कुछ प्रेम कथाएं योजनाओं से नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, वे बस घट जाती हैं अपने आप ही। और जब ये प्रेम कथाएं किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आते आते दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चुपचाप जीने लगता है। मन के किसी परकोटे के भीतर घायल सा तड़पता हुआ। काश हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को शब्द नहीं बचाते कभी। कई बार सम्मान और संवेदनशीलता ही उसका अंतिम आधार होता।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून

0: महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।